ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित की जाने वाली हिंदी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में

0: परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार, प्रस्तुत है चिंतन। प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है, प्रकृति ने कभी कभी उस दिल को नहीं दुखाया जिसने उससे प्यार किया। हमें इससे सीखना यह है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए, सदैव प्रकृति का सम्मान और प्रेम करना चाहिए। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 239। 6:45 पर सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 4। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम हैं राही प्यार के। पंद्रह मिनट पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम सुबह का केंद्रित होगा संगीतकार रामलाल पर। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, लेखक मनीष वैद्य, वाचक स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 11 बजे चित्रपट संगीत 11:30 पर मैटनी शो। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी सुनिएगा।

दोपहर 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे मंजाहे गीत, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए नाटक। नाट्य तरंग में आज नाटक मालविकाग्नि मित्र पहला भाग, इसका सुनिएगा। मूल संस्कृत नाटक महाकवि कालिदास, हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतर एवं निर्देशन चिरंजीत।

हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतर एवं निर्देशन चिरंजीत। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने, छह 6:35 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे विशेष जयमाला, मोहम्मद अजीज पर केंद्रित ये विशेष जयमाला कार्यक्रम सुनिएगा। पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर केंद्रित ये कार्यक्रम 7 बजे से विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा, 7:00 में रात 8 बजे सुनिए सुनो कहानी विश्वास का पहला भाग, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, वाचन अमरकांत दुबे, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा, गीतकार भरत व्यास पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे छाया गीत, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, 10:30 पर ढलती जाए रात, 11 बजे सुनिए चित्रपट संगीत। आप सुन रहे थे आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग 239।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कांड भाग 239।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए आज सुनिए इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज की चौथी कड़ी लेकर हम फिर उपस्थित हैं। रोनुदा, हमें बताइए हमारे श्रोताओं को कि आपने बांसुरी में कुछ रागों का समावेश किया, वो किन किन रागों का समावेश किया है?
2: बांसुरी में ज्यादातर सुनाई पड़ता था झिंझोटी, यमन, बागेश्वरी
1: जी,
2: हंसध्वनि और कुछ रागों को ऐसे माना जाता था कि अरे ये तो गाने का राग है। वो बात मुझे हजम नहीं होती थी
1: जी,
2: क्योंकि मैंने गाना सीखा है
1: जी।
2: तो दरबारी कानाड़ा से मैं बहुत प्रभावित था और ऐसी दरबारी मैंने पंडित रविशंकर जी से सुनी कि उनके सितार में और विलायत खान साहब, इन दोनों का अंग अलग है मगर दोनों अलग ढंग से उसमें गहराई लाते हैं। विलायत खान साहब भी, पंडित रविशंकर जी भी
1: जी।
2: और अमीर खान साहब, ये लोग दरबारी के बादशाह हैं। तो दरबारी में मैंने मेहनत करना शुरू किया। मुझे ये कहना है अपने श्रोताओं से कि दरबारी को कण उपकण से दरबारी खड़ा नहीं होगा। दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं।
1: गजब।
2: वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए तो वो आप कह सकते हैं कि मैंने

0: उस पर मेहनत किया। तो दरबारी कानड़ा एक राग है, एक राग है जो भीम पलासी से भी पुराना है, राग भीम
1: जी जी,
0: वो भी मैंने बचाया। भीम का तो मेरा रिवरी एल्बम ही है
1: जी।
0: और बागेश्री बहुत बसता था मगर रागेश्री नहीं बसता था, रागेश्री भी मैंने पॉपुलर किया
1: जी।
0: और नट भैरव और ये सब लोग बजाते थे मगर शुद्ध भैरव कम बसता था
1: जी।
0: तो सेक्रेट स्पेस करके मेरा एक एल्बम है जो कि लंदन से रिलीज हुआ, उसमें शुद्ध भैरव है
1: जी।
0: और चौताल में मैंने बजाया, पखावज की तरह बड़े मुंह का तबला लेके उसके साथ मैंने बजाया, कई प्रयोग मैंने किए
1: जी।
0: और बांसुरी में डेप्थ की कमी दिखती थी, हल्का हल्का लगता था
1: जी जी।
0: और जैसे ही रुद्रवीणा आए तो लगता था बांसुरी तो ठहर ही नहीं रहा है उसके सामने
1: जी,
0: तो वो क्यों नहीं ठहर रहा है। उस पे मैंने मीड़ घसीट और घसीट के साथ साथ आंदोलन
1: जी जी।
0: तो मैं आपको थोड़ा सा दरबारी कानड़ा
1: जी
0: मैं बजा के सुना रहा हूँ। और सीधी साधी बंदिश जो बच्चे फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर में सीखते हैं, जब वो संगीत अलंकार की तरफ जाते हैं तो दरबारी भी आ जाता है, विशारद के आगे जब जाने लगते हैं तो दरबारी आ जाता है। तो मैं दरबारी में जो गुरु कृपा करे
1: जी,
0: थोड़ा सा आलाप सुनिए आप, सिर्फ जी, दो तीन फ्रेज
1: जी। हम तो ये कहेंगे पंडित जी कि आप दरबारी कानड़ा के साथ साथ राग भीम की भी प्रस्तुति आप दें।
0: बहुत सुंदर। मैं भीम और गावती एक ही स्वर है मगर उसको भीम क्यों कहा जाता है वो बताऊंगा
1: जी।
0: गुणी लोग ऐसा मानते हैं कि राग भीम से ही भीम पलासी निकला
1: जी जी। तो पहले दरबारी कानड़ा,
0: पहले मैं दरबारी कानड़ा सुना रहा हूँ।

0: वाह बहुत सुंदर।
1: आप देखिए भीम को देखिए
0: जी,
1: गावती पे पहले मैं बजा रहा हूँ
0: जी।
1: गावती में सामा ज्यादा मध्यम को प्रधान किया।

0: और भीम में ऊपर में जाके कोमल गा लगता है।
1: तो इसमें तीव्र मध्यम था कि मध्यम था?
0: शुद्ध मध्यम,
1: शुद्ध मध्यम।
0: दोनों में शुद्ध मध्यम।
1: अच्छा,
0: गावती में भी और भीम में भी।
1: जी जी,
0: भीम में बस थोड़ा सा फर्क, ये तार सप्तक में जब कोमल गा लगेगा।

0: वाह अद्भुत था। रुनुदा यहाँ पर एक फिल्मी गाना हमें याद आ रहा है, फिल्म बैजू बावरा का, तो क्या ये गाना सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को जिसमें बांसुरी का?
1: अवश्य। इस गाने को रफी साहब ने ऐसा गाया कि कहते हैं ना कि भूतो न भविष्यति।
0: जी
1: न कोई पहले ऐसा गाया न कोई ऐसा गा सकेगा।
0: जी
1: शायद ईश्वर के दरबार में एक ही मोहम्मद रफी उनको बनाना था, एक ही किशोर कुमार बनाना था, एक ही मुकेश बनाना था। तो वो सुनवा देते हैं, दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले।
0: जी।

0: बैजू बावरा का ये गाना था मोहम्मद रफी की आवाज में। और अब इस कड़ी को समेटने का वक्त आ गया है, तो इस कड़ी को यहीं समेटते हैं। श्रोताओं से कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल उपस्थित होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश के आवाज में, मुकेश के गाये इस गीत से। रचना है भरत व्यास की, संगीतकार आनंद सागर, फिल्म का नाम आरोही।

मुकेश और बेला सावेर की आवाजों में आप सुन रहे थे आरोही फिल्म का गीत, रचना भरत व्यास की थी, संगीतकार आनंद सागर। श्रोताओं, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं सुप्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास को। लीजिए अब सुनिए भरत व्यास का लिखा ये गाना जिसे लता मंगेशकर ने गाया है। अमर ज्योति फिल्म का ये गीत है, रचना भरत व्यास की और वसंत देसाई संगीतकार हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अमर ज्योति फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना भरत व्यास की थी, संगीतकार थे वसंत देसाई।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: पुरानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

बेदर्द जमाना क्या जाने, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। इसे भी लिखा था भरत व्यास ने। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल चलिए लेते हैं।

0: दो आंखें 12 हाथ। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना भरत व्यास की थी, संगीतकार थे वसंत देसाई।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर की आवाजों में भारत मिलाप फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे भरत व्यास ने लिखा था और वसंत देसाई ने इस गीत की धुन बनाई थी। आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं गीतकार भरत व्यास को। उन्होंने अपने गीतों में भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और मानवीय संवेदनाओं को अत्यंत सुंदर भाव और शब्द दिए हैं। लीजिए सुनिए एक और गाना दो दोस्त फिल्म से। आवाज आशा भोसले की है।

की घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या

बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गीत मुकेश और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे। रचना थी भरत व्यास की, संगीतकार सतीश पाटिया। इस गाने के पहले आपने सुना था दो दोस्त फिल्म का गीत, आशा भोसले की आवाज थी, रचना भरत व्यास की थी और संगीतकार थे एस मोहिंदर। और मुकेश के गाए इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहता सुनने वाले सभी श्रोताओं को कुसुम कौर का प्रातःकालीन नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के सुविचार के साथ। पहले हर बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है।

और अब आइए आज की इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। आज ही के दिन सन 1914 में बर्दून का युद्ध समाप्त हुआ। 1997 में अमेरिकी यान सोजर्न मंगल ग्रह पर पहुंचा। और आज ही के दिन सन 1998 में चेक गणराज्य की याना नावोत्ना ने विंबलडन टेनिस का खिताब जीता। जापान ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्लेनेट बी नामक अपना प्रथम अंतराग्रहिक मिशन भेजा।

आज ही के दिन ब्रिटेन के एक पावर बोट द केवल एंड वायरलेस एडवेंचर ने 74 दिन 20 घंटे व 38 मिनट में यात्रा पूरी करके सबसे शीघ्र विश्व भ्रमण का रिकॉर्ड तोड़ा।

और अब आइए उनके बारे में जाने जो आज ही के दिन जन्मे। आज ही के दिन चिराग शेट्टी का जन्म हुआ, जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। सन 1957 में

और अब आइए उनके बारे में जाने जो आज ही के दिन जन्मे। आज ही के दिन चिराग शेट्टी का जन्म हुआ, जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। सन 1957 में उनका जन्म हुआ। 1943 में जन्म हुआ विमलेश कांति वर्मा का, जो भाषा विज्ञान, कोश निर्माण, पाठालोचन, अनुवाद और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले भारतीय रहे। 1916 में जन्म हुआ था नसीम बानो, जो हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। 1912 में दक्षिणयानी वेलायुधन का जन्म हुआ, जो भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिलाओं में से एक थी। और इसके साथ गुलजारी लाल नंदा का जन्म सन 1898 में हुआ, जो भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। और अब पुण्यतिथि जिनकी है उन्हें याद करते हैं। तो आज ही के दिन सन 1978 में निधन हुआ अम्मू स्वामीनाथन का, जो भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिलाओं में से एक थी। भरत व्यास, बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार का निधन आज ही के दिन सन 1982 में हुआ था। 1963 में निधन हुआ पिंगली वेंकैया का, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक थे। और आज ही के दिन सन 1902 में निधन हुआ स्वामी विवेकानंद, जो साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्राकंड विद्वान रहे। विवेकानंद की जितनी भी बातें की जाए उतना ही कम है। हमारे देश में विवेकानंद का जो इतिहास रहा है, जो बातें रही है, वो सच में स्मरणशील एवं हमेशा युगो युग तक रहने वाली है। तो आइए, ये थी अब आज की इतिहास, जन्म व्यक्ति और पुण्यतिथि के बारे में। तो आज पुण्यतिथि है भरत व्यास का, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि उन्होंने, वो बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार है। तो आइए सुनते हैं उनकी लिखे इस गीत को।

और अब आइए आज के स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि की ओर चलते हैं। आज के स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि में सबसे पहले 14 अगस्त तक हर हाल में प्राप्त करें टीबी स्क्रीनिंग लक्ष्य DDC। बिहार को टीबी मुक्त बनाने के लिए चल रहे टीबी मुक्त अभियान भारत अभियान को मिशन मोड में तेज करने के निर्देश के बाद शुक्रवार को रोहतास समाहरणालय परिसर में DRDA भवन सभागार में समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे ने की। अभियान की प्रगति की समीक्षा हुई। सभी प्रखंडों में टीबी स्क्रीनिंग की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जाँच सुनिश्चित करने को कहा गया। और अब 9 तक होगा इंटर में ऑन स्पॉट नामांकन। इंटर ऑन स्पॉट नामांकन की तिथि बढ़ाई गई है। अब 9 जुलाई तक नामांकन लिया जाएगा। पहले 1 जुलाई तक समय दिया गया था जिन्होंने इंटर में नामांकन को लेकर पहले OFSS के माध्यम से आवेदन नहीं दिया था उनको भी स्पॉट नामांकन में मौका दिया गया है। बिहार बोर्ड ने कहा है कि छात्र हित के में यह निर्णय लिया गया है। 10 जुलाई तक सभी +2 स्कूल और कॉलेज स्पॉट नामांकन के छात्र छात्राओं की सूची OFSS पोर्टल पर अपडेट करेंगे। जिन छात्र छात्राओं का नाम पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा उन्हीं को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा।

और हमारी अगली स्थानीय गतिविधि में नर्सों के लिए पॉलिएटिव केयर कार्यक्रम शुरू। नारायण नर्सिंग कॉलेज गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय ने इको इंडिया के सहयोग में NNC पॉलिएटिव केयर CCB इको प्रोग्रामिंग फॉर नर्सेज इन बिहार शुरू किया। एक माह का यह वर्चुअल कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम बिहार के नर्सिंग पेशेवरों को पॉलिएटिव केयर में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए रखा गया है। शुरुआत प्रोफेसर डॉक्टर के लता डीन सह प्राचार्य ने स्वागत भाषण से की। डॉक्टर संदीप भल्ला वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट इको इंडिया नई दिल्ली ने पहल की सराहना की।

अगली सुर्खी, जल संसाधन विभाग की टीम ने सोन नदी के कटाव का किया निरीक्षण। नौहट्टा स्थानीय प्रखंड के बांधू व आमरखा गांव के कटाव का संकट शीर्षक से दैनिक भास्कर में 2 जुलाई को खबर प्रकाशित होने के बाद जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की टीम द्वारा कटाव का स्थलीय निरीक्षण किया गया। अभियंताओं की टीम में सहायक अभियंता इंद्रपुरी बराज संजय झा, कनीय अभियंता दीपक कुमार शामिल थे। कटाव का स्थलीय निरीक्षण के बाद सहायक अभियंता ने बताया कि बांधू को आमरखा गांव में जल संसाधन विभाग द्वारा लगाया गया कटाव निरोधक कार्य में लगाया गया। काफी संख्या में जियो बैग दो वर्ष 2025 बाढ़ की तेज धारा में बह गए। उन्होंने कहा है कि कटाव रोकने के लिए 2 लेयर जियो बैग लगाया गया था, जिसमें से 1 लेयर जियो बैग पूरी तरह से झेल नहीं पा रहा है। उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2012 में बालू भरे जियो बैग के कटाव निरोधक कार्य कराया गया था। जियो बैग का आयु ऐसे भी 10 से 12 वर्ष ही रहता है।

और हमारी अगली गतिविधि में दीदी अधिकार केंद्र का कॉमन सर्विस सेंटर शुरू। संझौली प्रखंड परिसर में दीदी अधिकार केंद्र के तहत कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ। केंद्र को खुलने के बाद संझौली के ग्रामीणों को सरकारी और गैर सरकारी डिजिटल सेवाओं के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीविका संकुल स्तरीय संघ की अध्यक्ष कुमारी लता देवी ने की। मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख समीर चंद रहे। BPRO श्वेता कुमारी मौजूद रही। प्रखंड परियोजना प्रबंधक प्रभार पीयूष कुमार भी शामिल हुए। दीदी अधिकार केंद्र समन्वयक प्रियंका कुमार ने कहा कि केंद्र से बैंकिंग, आधार सेवाएं, पैन कार्ड, सरकारी फॉर्म भरना, दूसरे डिजिटल काम एक ही छत के नीचे मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। और इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, भरत व्यास के लिखे इस गीत के साथ।

और अब आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तो श्रोताओं, लगभग सभी समाचार पत्र हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, तो आइए आज की सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हमारी पहली सुर्खी ने सभी समाचार पत्रों में अपनी हेडलाइन में अपनी जगह बनाई है। सुर्खी है, हिंदुस्तान से करार, 12 टाउनशिप के विकास पर 1,00,000 करोड़ खर्च करेगा हुडको। वहीं प्रभात खबर लिखता है कि 12 सैटेलाइट टाउन 7,00,000 करोड़ से बनेंगे, हुडको देगा 1,00,000 करोड़। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के लिए हुडको से 1,00,000 करोड़ का MOU। और अब आइए समाचार विस्तार से। दैनिक जागरण से, आधुनिक सड़क सीवरेज हरित क्षेत्र में से युक्त 12 ग्रीनफील्ड टाउनशिप होगी विकसित। जो किसान मुआवजे के लिए आवेदन देंगे उन्हें 30 दिन के अंदर किया जाएगा भुगतान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में शुक्रवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको के बीच 12 राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को 1,00,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किया गया। मुख्यमंत्री के समक्ष नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार तथा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ ने MOU का आवेदन प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग तथा हुडको के बीच हस्ताक्षर किया गया है। यह समझौता बिहार के शहरी विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। राज्य में आधुनिक सुव्यवस्थित एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिसमें लोगों को बेहतर आवास, उच्च स्तरीय नागरिक सुविधाओं तथा गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध होगा।

और हमारी अगली सुर्खी को भी लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपनी जगह दी है। सुर्खी है हिंदुस्तान से, ई रिक्शा जाम करने वाले चीनी ऐप पर लगा प्रतिबंध। वहीं प्रभात खबर लिखता है, अराजक तत्व दूर से नहीं बंद कर पाएंगे ई रिक्शा, 3 चीनी ऐप देश में हुए बैन। समाचार विस्तार से, देश में बैटरी चालित वाहनों को दूर से बंद करने में कथित तौर पर इस्तेमाल हो रही चीन के 3 मोबाइल ऐप्स पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन चीनी ऐप्स बैट, BMS, लॉसीजी और एपॉक आई आयन को तुरंत हटाने का आदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर कुछ प्रैंक वीडियो वायरल होने के बाद साइबर सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को लेकर मिली शिकायतों का संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया गया।

और हमारी अगली सुर्खी दैनिक जागरण से, आधार ऐप से निशुल्क अपडेट करें ईमेल। 2.5 लाख से अधिक लोगों ने 2 दिनों में अपना ईमेल आईडी कराया अपडेट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है। अब लोग नए आधार ऐप के माध्यम से बिना किसी आधार सेवा केंद्र जाए अपनी ईमेल आईडी जोड़ या अपडेट कर सकते हैं। UIDAI के अनुसार यह सेवा 1 जुलाई 2026 से अगले 6 महीने तक पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। इस सुविधा के शुरू होने के केवल 2 दिनों के भीतर 2.5 लाख से अधिक लोगों ने आधार ऐप के जरिए ईमेल आईडी अपडेट कराया है। यू लॉन्च के 5 महीने के भीतर नए आधार ऐप को 3.1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। अब तक 40 लाख से अधिक लोगों ने मोबाइल नंबर अपडेट किया, जबकि लगभग 10 लाख यूजर ने अपने पते में भी संशोधन कराया है।

और हमारी अगली सुर्खी हिंदुस्तान से, देश में 52,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी। 3 सेनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों की खरीद होगी। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल, वायु रक्षा प्रणाली की खरीद की जाएगी। नौसेना को फायदा, नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, नेवन शिपबोर्न अनमैंड एरियल सिस्टम की खरीद तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना को स्वीकृति की दी गई। और वायुसेना को लाभ में, वायुसेना के लिए हाई एल्टीट्यूड स्टूडो सैटेलाइट समेत अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें इंटेलिजेंस, सर्विलांस, दूरसंचार और रिमोट सेंसिंग जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध होगी। इसमें वायुसेना की निगरानी और रणनीतिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। केंद्र सरकार ने 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी है, जिसके बाद खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। परिषद ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कई अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और रक्षा उपकरणों की खरीद को हरी झंडी दी है। भारतीय सेना के लिए एंटी अनमैंड एरियल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आकाश तरंग, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम तथा जेट आधारित कॉमिकेज ड्रोन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी है। आकाश तरंग प्रणाली सेना की अग्रिम टुकड़ियों को दुश्मन के ड्रोन हमले से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करेगी। वहीं मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दुश्मन के बख्तबर और मशीनीकृत वाहनों का मुकाबला करने में पैदल सेना की क्षमता को और मजबूत बनाएगी।

और हमारी अगली सुर्खी हिंदू प्रभात खबर से है, बिहार के अधिकतर जिलों में 6 से 8 तक अच्छी बारिश। बिहार में पटना सहित सभी जिलों में 6 से 8 जुलाई तक अच्छी बारिश होने का

0: जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावों और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। सरकार ने बैट, बीएमएस, ईपोक, आईआईएन और लॉसिकी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है विकास कार्य तथा योजनाओं से संबंधित जानकारियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान और इस अंक के साथ मैं लाल बहादुर दुबे। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत समरडीहा पंचायत क्षेत्र के गाँव शिवपुर चितौली के बारे में। सासाराम प्रखंड मुख्यालय से उत्तर दिशा में लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है शिवपुर चितौली। सासाराम से करगहर जाने वाली सड़क के द्वारा बाराडीह पुल से पश्चिम जाने वाली बाईपास रोड से वहां पहुंचने का मार्ग है। लगभग 200 घरों की बस्ती वाले इस गांव में अधिकांश लोग किसान और मजदूर हैं। गाँव तक पहुँचने के लिए प्रखंड क्षेत्र से सड़क सुविधा उपलब्ध है। वहीं गाँव में गली नाली भी पक्की देखने को मिली। गाँव में बिजली के पोल पर कवर्ड तार भी दिखाई पड़ा। गांव के पास ही एक मध्य विद्यालय है जहां बच्चों को पढ़ने की सुविधा है। छोटे बच्चों के लिए गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है, लेकिन कमरा जर्जर हो जाने के चलते गांव में ही किसी ग्रामीण के दलान में बच्चों को पढ़ाया जाता है। श्रोताओं, ये तो रही सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत समरडीहा स्थित ग्राम शिवपुर चितौली की बाहरी स्थिति जो हमें देखने को मिला, लेकिन वास्तव में वहाँ विकास की क्या स्थिति है, नाली गली पेयजल शिक्षा स्वच्छता स्वास्थ्य सुविधा के बारे में ग्रामीणों का क्या कहना है, सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं का लाभ वहाँ रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है, इन सभी जानकारियों के लिए हमने संपर्क किया ग्राम शिवपुर चितौली के लोगों से और बातचीत की। विषय है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत समरडीहा स्थित ग्राम शिवपुर चितौली में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, आज हम रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत समरडीहा स्थित ग्राम शिवपुर चितौली में उपस्थित हैं और हमारे साथ शिवपुर चितौली के कुछ ग्रामीण हैं। तो आइए मिलते हैं और बातें करते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
1: मुंद्रिका पासवान।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
1: शिवपुर चितौली।
0: अच्छा, पंचायत
1: समरडीहा
0: जी। अच्छा, पहले भी आप देखे होंगे शिवपुर चितौली को और आज देख रहे हैं, क्या बदलाव आपको लग रहा है?
1: बदलाव कुछ लग रहा है और उसी तरह से है सब। नाली कुछ बना है कुछ नहीं बना है, गली बनी है कुछ नहीं बनी है।
0: माने नाली गली का काम अभी बाकी है?
1: हाँ, बाकी है। देख रहे हैं गड्ढा में पानी आ रहा है, पूरा गाँव का पानी इसमें आ रहा है, फसल जो है बर्बाद हो रहा है खेत का।
0: अच्छा, निकास की व्यवस्था नहीं है आप लोगों को?
1: निकास का व्यवस्था रहता तो इसी में गिरता, थोड़े निकास नहीं है।
0: अच्छा, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
1: मजदूरी करते हैं, कुछ कोई खेती करते हैं
0: जी। खेती के लिए सुविधाएं हैं पानी की?
1: हाँ, पानी दिक्कत नहीं होता है, नहर से कैनाल से मिलता है
0: जी। अच्छा, यहाँ बिजली कैसी रहती है?
1: बिजली तो मिला जुला करके ठीक ही रहता है सब।
0: और उसमें जो सरकार छूट दे रही है?
1: हाँ, छूट भी मिल ही रहा है।
0: बच्चों को पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर?
1: स्कूल तो है 1 से 8 तक, लेकिन यहाँ पढ़ाई जर्जर स्थिति है। मास्टर लोग तो हैं 8 या 9 को, लेडीज अब मिला करके जेंट्स मिला करके शिक्षक लोग हैं
0: जी।
1: लेकिन बच्चा किधर घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, फील्ड के कंपाउंड के अंदर में है,
0: देख रेख बढ़िया नहीं है?
1: ना, बढ़िया नहीं है।
0: ये बताइए, सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ आपको मिल रहा है?
1: सरकारी योजनाओं का तो लाभ मिलता है हम लोगों को, पेंशन, वृद्धा पेंशन, लेकिन 2-3 माह से अभी बंद है, नहीं मिल रहा है। लगभग हमारे गांव में आधा आदमी को नहीं मिल रहा है अभी 2-3 माह से।
0: कुछ लोगों को मिल रहा है
1: मतलब? हाँ, कुछ लोगों को मिल रहा है। हम पता किए तो पता चला कि आप लोगों का केंद्र का है।
0: अच्छा,
1: दिल्ली से
0: जी।
1: जो बिहार सरकार की वृद्धा पेंशन है वो मिल रहा है।
0: अच्छा,
1: केंद्र वाला जितना भी है सबको बंद है, नहीं मिल रहा है।
0: हो सकता है कि आगे पीछे मिले। अच्छा, इसके अलावा बताइए, सरकारी योजनाओं में यहाँ कुछ लोगों को कॉलोनी मिली हुई है?
1: हाँ, कॉलोनी तो बहुत मिली है।
0: बहुत मिली है?
1: हाँ।
0: आपको भी मिली है?
1: हमको मिली है बहुत पहले।
0: अच्छा।
1: हमारे वाइफ के नाम से
0: जी जी। उसके बाद अभी लोगों को कुछ मिली हुई है?
1: हाँ हाँ, मिल रहा है सबको बारी बारी से
0: जी। अच्छा, राशन कार्ड का लाभ आप लेते हैं ना?
1: हम लोग 4 सदस्य हैं अपने घर में
0: जी,
1: लेकिन 3 सदस्य को मिलता है हमको राशन।
0: आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं?
1: हाँ, बना हुआ है।
0: मतलब कि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है?
1: हाँ, पहुंच रहा है
0: जी। धन्यवाद। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: धर्मेंद्र कुमार यादव।
0: धर्मेंद्र जी, क्या करते हैं आप?
2: खेती पथारी करते हैं।
0: गृहस्थी करते हैं? तो गृहस्थी के लिए जो सुविधाएं पानी की चाहिए यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है ना?
2: हाँ, सब ठीक है।
0: गांव की क्या स्थिति है, यहाँ नाली गली किस स्थिति में है?
2: अभी तो ठीक है, चल रहा है।
0: अच्छा, पीने वाला पानी आप लोगों को मिलता है? नल जल योजना

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विकास के सोपान कार्यक्रम। आइए सुनते हैं रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत समरडीहा स्थित ग्राम शिवपुर चितौली में विकास कार्य और योजनाओं पर बातचीत। प्रतिभागी है ग्रामीण ग्राम है शिवपुर चितौली ग्राम पंचायत समरडीहा और संचालन है लाल बहादुर दुबे।

0: का लाभ?
1: नहीं अभी तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने वाला है हम लोग की तरफ। उधर बैठा है, अभी चालू नहीं हुआ है, ये वाला खराब हो गया है।
0: अच्छा, ये एक सामने है इस पर टंकी गिर गया है कि अभी चढ़ा ही नहीं
1: उसका? नहीं, इस पर टंकी उनकी चढ़ गया है, खराब हो गया है ये।
0: तो पानी आप लोग अपने चापाकल का पीते हैं?
1: जी।
0: तो पानी की दिक्कत नहीं होती है गर्मी में?
1: नहीं, पानी की दिक्कत नहीं होता है, आराम से मिल जाता है।
0: अच्छा, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए क्या सुविधाएं हैं? आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय के बारे में बताइए।
1: आंगनबाड़ी केंद्र है पर चलता नहीं है,
0: क्या कारण है?
1: कोई इसमें टीचर नहीं है।
0: बच्चे तब तो छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाते होंगे कहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है?
1: नहीं, पढ़ते हैं, जाते हैं उनके श्री जो चौधरी हैं
0: जी,
1: उनके घर में पढ़ते हैं, उनका एक हॉल है।
0: तो कौन पढ़ाते हैं वहाँ पर?
1: श्री चौधरी उनका पतोह पढ़ाती हैं।
0: तो आंगनबाड़ी के तहत ही पढ़ाई होती है?
1: आंगनबाड़ी देखिए वाला सामने वाला है
0: जी,
1: आंगनबाड़ी नहीं है, वो पढ़ाती है वहीं अपने।
0: मैंने दूसरी जगह का आंगनबाड़ी केंद्र है वो?
1: नहीं, इसी का है, पर वो पढ़ाती है अपने घर में पढ़ाती है।
0: मतलब आंगनबाड़ी का घर नहीं है, मैंने रूम नहीं है, पढ़ाने के लिए स्थान नहीं है, वो घर में पढ़ाती
1: है। सब आंगनबाड़ी था लला टोला के तुम्हें तो सब ढह गया, सब में कुछ है नहीं, तो अपने घर में पढ़ाती है बेचारी।
0: अच्छा, कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, कुछ लाभ आप लोगों को मिला है? खेती गृहस्थी वाले आदमी हैं आप लोग, खेत अपनी होगी तो क्या सरकार से जो मिलता है 6,000 रुपए 2,000 करके किसान सम्मान निधि, उसका लाभ लेते हैं?
1: नहीं, हम लोग को नहीं मिलता है।
0: क्यों
1: नहीं मिलता है हमको?
0: आपको नहीं, आपके पिताजी को, जिसके नाम से?
1: नहीं, मेरे पिताजी को भी नहीं मिलता है।
0: क्या आवेदन नहीं किए हैं कि क्या? क्योंकि
1: आवेदन हम किए थे पर पैसे नहीं हुआ है, तो हम तो नहीं हुआ तो छोड़ दिए।
0: हम देखते हैं कि जिसके नाम से खेत है और सारी चीजें कम्प्लीट है तो मिल जाता है,
1: मैं तो नहीं मिल रहा है
0: जी। अच्छा, राशन कार्ड वगैरह है, लाभ मिलता है?
1: राशन मिलता है
0: जी। घर में बूढ़े लोग भी हैं जिन्हें पेंशन योजना का लाभ मिलता हो?
1: मेरे पिताजी को मिलता है।
0: मैंने योजनाओं का लाभ यहाँ लोगों को मिल रहा है,
1: बाकी ठीक है सर
0: जी। धन्यवाद। श्रोताओं, एक युवा से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं, क्या नाम है आपका?
2: बादल बेदर्दी नाम पड़ेगा, मेरा टाइटल बेदर्दी है।
0: आप बेदर्दी काहे रखे हैं भाई, क्या कुछ विशेष?
2: कुछ म्यूजिक लाइन का काम करते हैं, इसके वजह से थोड़ा सा
0: संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
2: जी जी।
0: क्या करते हैं संगीत में?
2: DOP और एडिटर का काम करते हैं उसमें, और थोड़ा मोड़ा गा भी लेते हैं।
0: DOP और
2: एडिटर का?
0: एडिटर मतलब कि जो म्यूजिक
2: एडिट करना, वीडियो का एडिट करना है, सब काम करते हैं सर।
0: बहुत अच्छी बात है, जो प्रतिभा आप में है इसका आप सदुपयोग करें, हम तो यही चाहेंगे भी। और आपने बताया कि आप पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, आप भी पढ़े होंगे जब बचपन में, तो यही विद्यालय होगा ना आपके गाँव का?
2: यहीं से पढ़े हैं, मिडिल क्लास तक यहीं से पढ़े, उसके बाद में सासाराम से पढ़े हैं। जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम हमारे यहाँ के हेडमास्टर थे, उनका दीनानाथ नाम था, बहुत अच्छा हेडमास्टर थे और बच्चों को ख्याल रखते थे बहुत ज्यादा। और आज के डेट में जाइएगा कि वहाँ पे समझिए कि कुछ व्यवस्था नहीं है, टीचर का जो देखरेख होना चाहिए वो चीज एकदम नहीं है। हालांकि मान के चले टीचर लोग को ध्यान देना चाहिए चीज के लिए, और हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए।
0: मैं जानना चाहता हूँ आपके गाँव के बारे में कि गाँव में विकास की क्या स्थिति है?
2: विकास का स्थिति सच पूछिए तो आधा विकास हो चुका है जो चाहिए, और पूर्ण रूप से चाहिए तो नहीं मिलता है यहाँ पे। 50% मिल जाता है पंचायत राज के जो थ्रू है, जैसे कॉलोनी हो गया, उसके बाद वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब मिलता है।
0: सरकारी योजनाओं का लाभ आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मिल रहा है?
2: हाँ, मिल रहा है, कुछ मिल रहा है और नहीं मिलता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पंचायत राज में हम लोग हैं तो यहाँ को पानी का व्यवस्था होना चाहिए, मानते हैं। अब यहाँ से टंकी का बात करें कि जब से बना है, जब से हम टंकी देखे हैं करीब 5 साल प्लस हो गया है, आज तक एक भी दिन नहीं चला है वो। हमारे गाँव में जैसे कि 11 वार्ड पड़ता है, 12 वार्ड पड़ता है, दोनों वार्ड में एकदम एक भी दिन नहीं चला है। किसी
0: का पानी आप लोग नहीं पीने
2: वाले? पब्लिक से यहाँ पूछ लीजिएगा, एकदम नहीं चला है यहाँ पे।
0: तो हर घर में अपना चापाकल है?
2: हाँ, चापाकल है, क्योंकि यहाँ का पानी मतलब लेयर बढ़िया रहता है, इसके वजह 35-40 फीट पे मिल जाता है, इसके वजह से कोई दिक्कत नहीं रहता है।
0: तो सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ लोगों को मिल रहा है, लेकिन विकास में अभी कुछ कमी है?
2: बहुत कमी है, देख रहे हैं गली नली आधा हो चुका है, आधा नहीं हो चुका है। इस पे विशेष ध्यान रखना चाहिए हमारे पंचायत को, मुखिया को।
0: आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर नहीं है?
2: आंगनबाड़ी का स्थिति इतना जर्जर हो चुका है कि अपने बच्चों को लोग नहीं भेजते हैं, टूट फट
0: मतलब
2: गया है,
0: डर
2: बहुत जर्जर है, इसके वजह से लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, बहुत दिक्कत है। वैसे हमारे गांव में सेविका लोग हैं तो वही जो मिडिल क्लास स्कूल है उसी में एक रूम है, उसी में पढ़ने के लिए बच्चा सब जाता है।
0: अच्छा चलिए, तो बात विकास को ही, आप अपने बारे में बताइए। आपने कहा
2: अभी तो मेरा स्टूडेंट लाइफ है और ज्यादातर कोचिंग
0: की शिक्षा कहाँ से ले रहे हैं?
2: फिलहाल BFX कोर्स कर रहे हैं और कोशिश है कि जितना जल्द पूरा हो जाए तो एडिट के क्षेत्र में जाएं और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अच्छा अच्छा एडिट करें। गाने के लिए भी सोचेंगे, अभी फिलहाल
0: गाते भी हैं,
2: थोड़ा थोड़ा गा लेते हैं।
0: तो हमारे श्रोताओं को कुछ सुनाना चाहेंगे, एक आध लाइन
2: सुना देंगे? कि तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।

श्रोताओं, आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में क्रिमिनल फिल्म का यह गीत। रचना इंदिवर की थी और संगीत था M.M. किरावानी का। गीत संगीत का आनंद लेने के बाद आइए चलते हैं ग्रामीणों के बीच। श्रोताओं, आज हमारी बातें हो रही है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत समरडिहा स्थित ग्राम शिवपुर चितौली के लोगों से, और जान रहे हैं शिवपुर चितौली में

0: हुए विकास कार्यों और योजनाओं के बारे में तथा यहाँ पर रहने वाले लोगों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में। आइए कुछ लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं। आप अपना परिचय दें, नाम क्या है आपका?
1: दिनेश सिंह।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
1: शिवपुर चितवली का।
0: जी, ये बताइए क्या स्थिति है आपके गाँव की, विकास के मामले में कैसा है आपका गाँव?
1: ठीक है।
0: नाली गली कम्प्लीट है?
1: पूरा कम्प्लीट नहीं है, कुछ बाकी है।
0: पहले भी आप गांव को अपने देखे होंगे और आज देख रहे हैं, कुछ लग रहा है कि पहले से कुछ बदलाव हुआ है?
1: कुछ बदलाव हुआ है।
0: यहाँ लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था है कि नहीं? अगर बीमार कोई पड़ जाए अचानक रात्रि में या ऐसे समय में, तो कुछ है यहाँ पर आसपास में कोई व्यवस्था, सरकारी सुविधा?
1: सरकारी सुविधा नहीं है।
0: कहाँ जाना पड़ता है?
1: सासाराम।
0: उप स्वास्थ्य केंद्र आसपास में नहीं है आप?
1: नहीं।
0: समरडीहा जो आपका पंचायत है वहाँ पर है कुछ व्यवस्था?
1: हाँ, वहाँ पर है।
0: तो वह दूर पड़ता है क्या?
1: रात को नहीं न रहती है, दिन में आती है, अपना देख कर चली जाती है।
0: अच्छा, बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र की क्या स्थिति?
1: ठीक है,
0: बढ़िया है ना वहाँ पर बच्चों को बैठने की व्यवस्था?
1: बैठने की व्यवस्था बढ़िया है।
0: आप करते क्या हैं?
1: हम बैठे रहते हैं।
0: आप कितनी उम्र है आपकी?
1: 65 बरस।
0: तो बच्चे कार्य करते हो, खेती गृहस्थी?
1: हाँ,
0: खेती गृहस्थी है ना?
1: ना, खेती गृहस्थी नहीं है, मजदूरी है।
0: अच्छा, 60 पार कर चुके हैं, चूँकि सीनियर सिटीजन आप हो गए हैं, तो पेंशन योजना का लाभ आप ले रहे हैं?
1: 2-3 महीना से नहीं मिला।
0: तो पहले चलता था?
1: हाँ, चलता।
0: हो सकता है कोई समस्या हो। और बताइए, राशन कार्ड है?
1: राशन कार्ड है,
0: उसका लाभ लेते हैं ना?
1: हाँ, लेते हैं लाभ।
0: राशन कार्ड वालों को आयुष्मान कार्ड भी बनता है, बनवाए हैं कि नहीं?
1: बनवाए हैं।
0: कॉलोनी भी कभी आपको मिली थी?
1: हाँ, कॉलोनी मिली थी।
0: पैसा मिला था उससे बनवा लिए हैं कि वह?
1: बनवा लिए हैं।
0: तो उसी घर में रहते हैं?
1: हाँ।
0: जी, धन्यवाद। आइए, एक बुजुर्ग हैं, इनसे इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: कामता शर्मा।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: शिवपुर चितौली।
0: शिवपुर चितौली, ये पंचायत कौन है?
2: समरडीहा।
0: समरडीहा पंचायत
2: जी।
0: कितनी उम्र है आपकी?
2: 75।
0: 75 साल की उम्र। आप तो बहुत पहले से अपने गाँव को देखे होंगे और आज देख रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि पहले से बदलाव?
2: पहले से बहुत बदलाव है। हम लोग नहर से उतरते थे तो समझे कि कीचड़े में आते थे।
0: अच्छा,
2: अब तो खैर सुझाव हो गया है कि यहाँ कम से कम जूता पहन के तो चलते
0: हैं। ये बदलाव हुआ है?
2: हाँ, बदलाव हुआ
0: पहले से
2: है। बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव।
0: अच्छा, विद्यालय भी पहले आप पढ़े होंगे, कैसा था यह विद्यालय? था पहले कि कहीं दूसरे?
2: पहले था, पहले था,
0: बहुत पहले था,
2: बहुत पहले था। यहाँ तो करीब करीब 2-4 गाँव का आदमी पढ़ने आते थे।
0: कौन कक्षा तक विद्यालय, किस क्लास तक?
2: 8 तक।
0: तो आपके समय भी था यह?
2: हाँ, हाँ, पहले मिट्टी का था, अब पक्का हो गया।
0: मैंने बदलाव हुआ उसका भी?
2: हाँ, बदलाव हो गया,
0: हर चीज बदल गया
2: जी,
0: है
2: जी।
0: तो कैसी व्यवस्था है वहाँ पर, पढ़ाई लिखाई के लिए, बैठने के लिए, बच्चों की व्यवस्था?
2: पढ़ाई लिखाई में कमजोरी है
0: जी,
2: ध्यान लोग नहीं देते हैं
0: जी।
2: बच्चों के लिए पढ़ाती है सब, लेकिन कौन बच्चा कहाँ है, क्या करता है?
0: वहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था है?
2: बहुत साधन है,
0: सब कुछ ठीक है, लेकिन पढ़ाई के लिए ध्यान नहीं लोग दे पाते हैं।
2: बस
0: पीने वाला पानी आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं?
2: जल कल से नहीं मिलता है, अपना अपना
0: नल जल योजना?
2: ये तो नहीं है,
0: एक ही है यहाँ।
2: ये है और नया पश्चिम किनारे छोटा वाला
3: बन रहा है अभी,
2: अभी चालू नहीं हुआ है।
0: अभी चालू नहीं हुआ, ये था तो ये खराब हो चुका है।
2: हाँ, और कोई कमी नहीं है, वो तो पूरा हो ये रहा है थोड़ा देर।
0: अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर लोग कार्य क्या करते हैं?
2: कार्य जो गृहस्थी करते हैं वो गृहस्थी करते हैं, ज्यादा करके लेबर क्लास का आदमी है, मजदूर
0: जी। अच्छा, खेती गृहस्थी होती है?
2: नहीं, हमारा गृहस्थी नहीं, हम लोग लकड़ी का काम करते हैं। सब बच्चों लकड़ी का काम सीखे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं आज तक।
0: यहाँ लोगों को कुछ सरकारी योजना का लाभ मिला है कि नहीं?
2: बहुत मिला है, काहे राशन मिलवे करता है, बूढ़ा पेंशन मिलवे करता है।
0: कॉलोनी वगैरह?
2: कॉलोनी भी मिलता है, बहुत लोगों का मिला है पहले भी, अब तो बारी बारी से होगा जी,
0: जी, जी। जो योजनाएं हैं वह लोगों तक पहुंच रही हैं?
2: हाँ हाँ,
0: योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं है?
2: नहीं, दिक्कत नहीं।
0: क्या कहना चाहेंगे गाँव के बारे में? और
2: जो विकास बढ़ने वाला है बढ़ जाएगा तो और अच्छा है, जो टूटा फूटा है मरम्मत हो जाएगा तो और अच्छा है
0: जी। धन्यवाद। श्रोताओं, आइए एक और व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
4: बजरंगी कुमार।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
4: शिवपुर चितौली।
0: कौन पंचायत है?
4: समरडीहा पंचायत है।
0: क्या करते हैं आप?
4: प्राइवेट जॉब करते हैं।
0: कोई बात नहीं, अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट व्यवसाय कर रहे हैं, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। आप स्वतंत्र हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, घर के साथ भी जुड़े हुए हैं। अपने गांव के बारे में बताइए, नाली गली कैसी स्थिति में?
4: नाली गली जो पहले से बना हुआ है अभी वही है, और कुछ नया विकास नहीं हुआ है।
0: 4-5 साल, 8 साल पहले जो बना हुआ है
4: वही है,
0: उसमें अभी ठीक है ना नाली?
4: हाँ, वो ठीक है, जो है जो है।
0: बिजली कैसी रहती है?
4: बिजली अच्छा रहता है, बिजली में कोई दिक्कत नहीं है।
0: सरकार से जो छूट मिल रही है बिजली में, उसका लाभ ले रहे हैं?
4: हाँ, वो तो मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी 125 यूनिट फ्री मिला है
0: जी।

0: तो अभी तो वही जल रहा है।
1: तो बहुत से लोगों का तो बिल माफ हो जा रहा है, उसमें पैसा नहीं लग रहा है एक पैसा भी।
0: हाँ तो अभी कुछ कुछ लोगों का बहुत बिजली काफी बढ़ गया, तो उन लोगों का लाइन भी कटा हुआ है।
1: अच्छा, मतलब पहले का ड्यू जो बाकी है।
0: हाँ पहले का ड्यू बाकी है, तो लाइन काटा था
1: पहले का जो बाकी है तो देना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल देना पड़ेगा, ही नहीं देना पड़ेगा।
1: समय समय पर कैंप लगता है, उसमें अपने बिल को सुधार करवा करके जमा कर सकते हैं लोग। अच्छा, सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, कुछ लाभ आपको आपके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है?
0: सरकारी लाभ तो सर कुछ मिल नहीं रहा, बस जो जो राशन का मिल रहा है वही मिल रहा है।
1: राशन कार्ड बना है इसलिए राशन का लाभ ले रहे हैं
0: जी।
1: आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं?
0: आयुष्मान कार्ड शायद बना है, क्या था शायद पापा का
1: नहीं, जितने घर के जो सदस्य होंगे टोटल का बनता है, जो जिसका राशन कार्ड में नाम होगा उसमें पूरे परिवार को 5 लाख तक की सुविधा मिलती है, अगर बीमार होने पर, गंभीर बीमारी पर।
0: नहीं बस वही पापा का शायद बना हुआ है।
1: पापा की उम्र कितनी है?
0: पापा की उम्र वही लगभग 60 के लपेट में।
1: अच्छा, पेंशन योजना का लाभ पापा को मिलता है?
0: पापा का पेंशन मिलता है
1: जी। खेती वाली जमीन भी है घर पर?
0: हाँ कुछ कुछ है।
1: किसान सम्मान निधि योजना जो 2-2 हजार 3 बार आते हैं?
0: नहीं, नहीं मिलता नहीं है।
1: मिलता नहीं है कि भरे नहीं है?
0: भरे थे हम बनवाने के लिए।
1: क्यों रुका उसको नहीं पता के फिर?
0: पता किए तो बन रहा है, अभी बनते बनते कितना दिन।
1: एक पोर्टल होता है जहाँ पर देखिएगा, साइबर कैफे पर जाकर अपना जो नंबर मिला होगा उसे दिखलाइएगा, तो किस कारण से या तो बैंक का पासबुक नहीं मिलान करेगा, या फिर नाम में कोई लेटर भी अगर गड़बड़ हो जाएगा उस पर नहीं मिलेगा, जन्मतिथि गड़बड़ होगा उस पर नहीं मिलेगा, या फिर जो रसीद है वह मिलान नहीं होगा, खाता प्लॉट उस पर भी रुक जाता है। तो एक बार पता करा लेना चाहिए।
0: कृषि सलाहकार जो होते हैं ना,
1: सलाहकार,
0: तो उनसे भेंट करना है।
1: हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सलाह। कॉलोनी वॉलोनी के तो आप पात्र नहीं?
0: नहीं अभी तक कॉलोनी, अभी तक मेरा उम्र इतना हो गया है कि भाई कॉलोनी
1: कॉलोनी के पात्र हैं, सबको नहीं मिलता।
0: कहीं नहीं है।
1: फॉर्म भरे हैं कॉलोनी का?
0: हाँ जी।
1: देखिए, योजनाएं उसी के लिए होती है जो नीडी होता है, मतलब जिसकी आवश्यकता होती है। जिन्हें आवश्यकता है उसको योजना लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जिनके पास सब सुविधा है, साधन है, वो ले लें तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: अभी कॉलोनी नहीं मिला है।
1: और सब तो गाँव में ठीक ही है ना?
0: हाँ अभी तो सब सर ठीक है, चल रहा है।
1: तो मतलब योजनाओं का लाभ आप लोगों को यहाँ मिल रहा है, लेकिन समस्याएं यहाँ पर कुछ विकास को लेकर है जो होना चाहिए।
0: हाँ
1: जी, धन्यवाद। श्रोताओं, आप सुन रहे थे सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत समरडीहा स्थित ग्राम शिवपुर चितौली के लोगों से की गई हमारी बातचीत। विषय था रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत समरडीहा स्थित ग्राम शिवपुर चितौली में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, यदि आप भी अपने गांव मोहल्ला में हुए विकास कार्यों के बारे में बातचीत करना चाहते हों, या आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन 821115। पत्र के अलावा आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisassaram akashvanisassaram@gmail.com। श्रोताओं, समय अब आपसे और अधिक बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह एक नई जानकारी लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे, आज ही के दिन ठीक इसी समय। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। कार्यक्रम संकलन एवं सूत्रधार लाल बहादुर दुबे, और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विकास के सोपान। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र को FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को है। हमारा अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। लीजिए सुनिए भोजपुरी एल्बम लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी। लोक माधुरी में आइए सबसे पहले सुनवाते हैं राम नाम लाडो एल्बम से ये गीत।

शारदा सिन्हा के स्वर में अभी हम सभी सुन रहे थे ये लोकगीत, और इसी लोकगीत के साथ लोक माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोताओं, आप ट्यून किया है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र को FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है भोजपुरी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रसधार। रसधार कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं सब मतलब के मीत एल्बम से ये निर्गुण गीत। और इस गीत को स्वर दिया है रंजन दुबे ने, अनुज तिवारी ने शब्द और असलम मिर्ज़ापुरी ने संगीतबद्ध किया है।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, परदेसिया लौट के आजा एल्बम से। अमित मिश्रा मथुर ने इस गीत को शब्द दिया है, क्षमा करें, स्वर दिया है अरुण कुमार चौहान के शब्द, और रतन बाबा ने धुन बनाई है।

0: किरण पांडे के गाए इसी गीत के साथ रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती से रिले किया जाएगा, कृपया करें कुछ पल का इंतजार।
1: श्रोते हो, रविवारी 5 जुलैला दुपारी 12 वाजता आकाशवाणी कोल्हापूर केंद्र निर्मित वनिता मंडळ या कार्यक्रमामध्ये अवश्य श्रोते हो।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में। कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था कलाबाज। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लवर्स का दो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और अमित कुमार के हैं, रचना आनंद बख्शी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं खय्याम साहब की संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे रविंद्र जैन। इस गाने के साथ ही आज का ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, बारिश प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो

चिलचिलाती गर्मी से हमें राहत दिलाता है और ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से एक बहुत ही मनमोहक और सौंधी खुशबू आने लगती है। आसमान में काले काले बादल छाते ही मन हर्षित हो जाता है, है ना? और ये बादल तो हमेशा ही मानव मन में कल्पना जगाते हैं, प्रेम और उमंग जताते रहे हैं। चाहे वो नीले आसमान में तैरते रुई जैसे गोले हों, या सावन के गहरे उमड़ते घुमड़ते बादल या काली घटाएं, ये सभी हमारे मन को बहुत लुभाती हैं। हमारे ही मन को क्यों, हमारे फिल्मकार, हमारे गीतकार इससे अछूते थोड़ी रहे हैं। वो भी इन काले बादलों पर अपना मन हार बैठते हैं और अपनी फिल्मों में या अपने गीतों में इन काले काले बादलों को स्थान देने लगते हैं। तो आज मैटिनी शो में उन्हीं कारे कारे बदरवा पर लिखे कुछ गीत हम लेकर आए हैं।

तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कारे बद्रा पर आधारित कुछ फिल्मी गाने। और जब बात कारे बद्रा की चले और फिल्म भाभी का गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये फिल्म थी भाभी, 1957 की फिल्म है और लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार चित्रगुप्त थे, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और एक भावुक और बहुत ही मधुर गीत लिखा गया और इस गाने में अभिनेत्री श्यामा ने बहुत ही

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में लिया है। 1953 की फिल्म है शिकस्त, संगीत शंकर जयकिशन का था। और सबसे बड़ी बात कि ये भी वर्षा के मौसम और प्रियतम की याद में जो गीत गाए गए, जो गीत लिखे गए, उन्हीं शुरुआती बेहतरीन गानों में से एक ये भी गीत है। फिल्म का नाम है शिकस्त और इसके गीतकार हैं शैलेंद्र।

इन बादलों ने हमेशा प्रकृति प्रेमी को लुभाया है। हमारे गीतकार, हमारे फिल्मकारों ने तो इनका वर्णन किया ही है, लेकिन जो हमारे महान साहित्यकार हुए हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, महान छायावादी कवि, उन्होंने भी बादलों के घूमने और उनके सौंदर्य पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। घिर रहे घूमड़ कर आसमान में, भर रहे गर्जन गंभीर, शून्य में उड़ते विहग अब लौट चले अपने कुटीर। यानी ये काले बादलों के भव्य, शांत और गंभीर रूप का उन्होंने इन पंक्तियों में चित्रण किया है। तो ऐसी ही एक फिल्म है 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के, और इस फिल्म का गीत है जारे जारे कारे बदरा। बहुत ही खूबसूरत गीत, हमें बेहद पसंद आता है, आप सभी को भी पसंद आता है। लता मंगेशकर की आवाज है और नंदा और जितेंद्र पर इस गीत को फिल्माया गया है, और ये गीत बादलों को संबोधित करके अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बहुत ही मशहूर है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों में, खासतौर से हिंदी फिल्मों की ही बात चल रही है, बादल एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। कभी ये दूर रहने वाले प्रियतम को संदेश पहुंचाने वाले दूत का प्रतीक होते हैं, तो कभी किसी बिछड़े प्रेमी के गहरे दुख को दर्शाते हैं। कभी प्रेमिका के घने लहराते बालों की तुलना आकाश के काले भूरे बादलों से हम करते हैं, तो कभी कुछ और। ये बादल अशांत, चंचल, शरारती और कभी कभी निर्मम भी हो जाते हैं, और बहुत सारे गीतों में इनको याद किया जाता है। कभी बादल के रूप में, कभी बदरा के रूप में, कभी घटा के रूप में, कभी मेघा के रूप में, अलग अलग शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन भाव वही होता है।

कि हम जब किसी को याद करते हैं तो लगता है कि ये बादल शायद हमारे लिए मेघदूत का काम करेंगे। एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है। आशा भोंसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। ये फिल्म है धूल का फूल।

दोस्तों, बादल केवल बारिश का पानी ही नहीं लाते हैं, बल्कि ये आसमान के कैनवास पर प्रकृति द्वारा उकेरी गई एक ऐसी कविता होती है जो पल पल अपना रंग और रूप बदलती रहती है। बादल हमें कभी किसी रूप में नजर आते हैं, कभी किसी आकृति में, और हम जब बादलों को बहुत ही गौर से देखते हैं तो न जाने कैसी कैसी सुंदर आकृतियां बन जाती हैं, है ना? तो चलिए फिल्म दिल दे के देखो, जो कि 1959 की फिल्म है, उसका एक सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बेहद रोमांटिक और मनमोहक गीत है। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार उषा खन्ना हैं।

इस गाने में बारिश के मौसम की प्राकृतिक सुंदरता और नायिका की भावनाओं के बीच का संबंध गीतकार ने लिखा है। यानी बोल जैसे हैं, मेघारे बोले घनन घनन और पवन चले सनन सनन, यानी बारिश के आने और ठंडी हवाओं के चलने का वर्णन गीतकार ने बहुत ही शानदार तरीके से इस गीत में किया है, जो वातावरण में एक मादक और खुशनुमा माहौल पैदा कर देते हैं। और जैसे ही मौसम सुहावना होता है, नायिका का मन जियारा मोरा डोले अपने प्रियतम के लिए पुकारता है और उसका जिया मचलने लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये गीत नायिका के उस मनभावन इंतजार और अपने प्रेमी के प्रति उमड़ते प्यार को दर्शाने वाला बहुत ही प्यारा गीत है, जो बारिश के मौसम में और गहरे काले बादल के छा जाने पर ये गीत भी उतना ही गहरा हो जाता है।

आज हमने उन गीतों को लिया जो हमें भी मोह लेते हैं और हमारे गीतकारों को भी, यानी आसमान में छाए कारे बदरा। तो कार्यक्रम के अंत में अब हम आपके लिए

अपने प्रिय के पास अपना प्रेम संदेश और अपने रो रो कर बीते दिनों का हाल अपने साजन तक पहुंचाना चाहती है, तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

तो ये था आज का मैटिनी शो। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल और

0: पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द-ए-खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आज हम याद करेंगे महान गीतकार पंडित भरत व्यास को। दो आंखें बारह हाथ, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं। आवाज लता मंगेशकर की, पंडित भरत व्यास की बोल और वसंत देसाई का संगीत।

0: मीना कपूर की आवाज को अभी आपने फिल्म आंखें में सुना। पंडित भरत व्यास की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये स्वर है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। पंडित भरत व्यास की रचना को संगीत में ढाला है वसंत देसाई ने।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पंडित भरत व्यास को। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जय चित्तौड़। आवाज लता मंगेशकर की और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पंडित शिवराम के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना सुनिए। गायिका है सुमन कल्याणपुर और ये फिल्म है कण कण में भगवान।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल सुनिए, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी।

घटना चकट पन घटना घेर घूम घटना छेड़ झट जाने दो गेट मुहे भैर देर मेरे सत समाज तुहे आए ना लाज तुहे दगाबाज दगाबाज धक धक धक धक धक धड़के जिया थर थर थर थर थर कांप जिया थर पत्त किया हट जा हट जा हट जा।

गोरी गोरी गोरी गोरी कमल किशोरी चंचल चकोरी एक गाँव किशोरी में नवल नवेली अलबेली नार समझाए थके तो बार बार मैं।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं आया। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एसएन त्रिपाठी की संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मीना कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है अंगुलीमाल। रचनाकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार हैं अनिल बिस्वास।

0: एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम भक्त प्रहलाद, गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीत दिया है बी एन बाली ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

कार्यक्रम का अगला गीत वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, स्वर है मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर और साथियों की, और ये फिल्म है भरत मिलाप।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज में फिल्म गृहलक्ष्मी का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीतकार हैं अविनाश व्यास।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गाना। पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है सतीश भाटिया ने।
1: कैसी उलझन, कैसी पहेली,

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल कुरैशी के संगीत निर्देशन में ये पंडित भरत व्यास की अंतिम रचना। इस कार्यक्रम की आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने पंडित भरत व्यास को याद किया था।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। हमारे ये कार्यक्रम सुनने के लिए बेताब हैं, है ना? बेकरार हैं, है ना? चलिए, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, खास तौर से वो श्रोता जो थोड़ा सा गहराई में जाकर संगीत को पसंद करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि गजल सुनी जाए, है ना? लगता है ना कभी कभी कि आज धूम धड़ाके से अलग हटकर कुछ गजलों का रसास्वादन किया जाए। जिंदगी में बहुत बार हम जब गमगीन होते हैं, दुखी होते हैं, या बहुत धैर्य और गंभीरता से जीवन बिता रहे होते हैं, तो हम गजलों को बहुत पसंद भी करते हैं। और हमारे कुछ श्रोता तो गजलों को ही पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, हमारे कई श्रोता ऐसे भी हैं जो हर तरह का संगीत पसंद करते हैं। तो हम तो हमारे सभी श्रोताओं का ख्याल रखते हैं कि कुछ श्रोता जो आज गजलें सुनना चाहते हैं, तो चलिए उनके लिए कुछ गजलें लेकर हम आते हैं। तो ये जो गजलें हैं, फिल्मी गजलें हैं, जो विशेष रूप से बॉलीवुड के संगीत और फिल्मों के लिए लिखी जाती हैं। और दोस्तों, ये शास्त्रीय गजलों की छंद, तुकबंदी और भाव को बनाए रखती हैं, लेकिन इन्हें फिल्मों के कहानी और मूड के अनुसार थोड़ा सा आसान धुनों में ढाला जाता है। और फिल्मी गजलें उर्दू और हिंदी शायरी के बेहतरीन नमूनों, जैसे कि शेर, मतला, मक्ता, इन सभी को आम लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। तो गजलों का उपयोग फिल्मों में तब किया गया जब गहराई, उदासी, प्रेम की तड़प या अंतर मन की उथल पुथल को पर्दे पर दिखाया जाता है। तो आज ऐसी ही उथल पुथल बनी रहेगी सुरीला सफर के इस प्यारे से सफर में। तैयार है ना आप इस सफर में, जहां हल्की फुल्की उथल पुथल भी है, गहराई भी है, हो सकता है उदासी भी हो। लेकिन हाँ, जब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह की गजलें पसंद करते हैं, क्योंकि आज हमने उन गजलों को चुना है इस कार्यक्रम में जहां गजल की संरचना को कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। जैसे जैसे कि गजल में कम से कम 5 शेर होते हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण होता है। दूसरी ओर नज्म में एक ऐसा विषय होता है जो उसके शेरों में समाहित होता है, है ना? तो प्रत्येक शेर का जो अंत है रदीफ यानी शब्द या वाक्यांश से होता है, जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द आता है। तो काफिया और रदीफ ही शेरों को आपस में जोड़ते हैं। तो इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमने आज की कुछ खास गजलें आपके लिए चुनी है इस कार्यक्रम में। तो हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं, www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर जिन्होंने अपने विचार लिख दिए हैं, वे तो समझ ही गए हैं कि आज का विषय गजलें हैं और आज हमने क्या टेक्स्ट आपके लिए लिखा है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आज का टेक्स्ट है, हमारी फिल्मों में गजलें केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने का सशक्त माध्यम रही हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। जब संवाद ना काफी होते हैं, तब गजलें अंतर मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को गहराई से पर्दे पर उतारती है। तो आज सुरीला सफर इन्हीं बेहतरीन पुरानी गजलों के साथ, बताइए आज कौन कौन सी चुनिंदा गजल आपके लिए पेश है। पेशी खिदमत है कार्यक्रम की ये पहली गजल। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का विषय गजल जानकर मुझे गीतकार गोपाल दास नीरज की पंक्तियां याद आ रही हैं। लोग लिखते हैं अखबारों में छपने के लिए, हम लोगों के दिलों पर गजल लिखते हैं। बहुत खूब। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सुनने वाले के दिल पर गीत से ज्यादा गजल का असर होता है। कभी कभी कोई बात पूरा गीत नहीं समझा सकती तो गजल का एक शेर समझा देता है। एक ही बात को कहने का हर शायर का तरीका अलग अलग होता है। जहां महबूब की तारीफ में गालिब कहते हैं कि वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, वहीं मीर तकी मीर कहते हैं हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसके जुल्फ के सब असीर हुए। क्या खूब, बहुत सुंदर। फिल्मों में साहिर, शकील, हसरत, कैफे आजमी ने अपने गजलों के माध्यम से खूब वाहवाही बटोरी है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल शब्द अरबी भाषा के गजाल शब्द से बना है जिसका अर्थ हिरण होता है। काव्य के संदर्भ में जब हिरण शेर के डर से भागता है तो अंत में गिर जाने पर उसके मुंह से जो दर्द भरी चीख निकलती है उसे गजल कहा जाता है। आपके दिए गए पैराग्राफ के आधार पर गजल का निर्माण संगीत, शायरी और भावुकता के अनूठे संगम से होता है जो

अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प और आध्यात्मिक प्रश्नों जैसी गहरे मानवीय जज्बातों को शब्दों में पिरोने से बनती है। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मी नगमों में शायरी और गजलों का एक बेहद खास और गहरा इतिहास रहा है। फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों के जज्बातों को गहराई देने के लिए कई मशहूर गजलों को बेहतरीन गानों के रूप में पेश किया गया है। हिंदी फिल्मों की कुछ सबसे सदाबहार और मशहूर गजल फिल्म अर्थ है और जगजीत सिंह इस गजल से फिल्म जगत में एक अलग मुकाम बनाते हैं। गिटार और सारंगी के बेहतरीन इस्तेमाल ने इस गजल को सुकून भरा नगमा बना दिया है और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यह गजल क्या है, दो मिश्रों में जज्बात की जगमगाहट या बेसिर पैर की बातें। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें रब नहीं होता, मगर शायरों का मानना है कि इसमें जिंदगी होती है। मिर्जा गालिब के जमाने से पहले शुरू हुआ गजलों का दौर हमारे भारतीय फिल्मों में आज तक चल रहा है। फिल्मी गीतकार बदायूनी, मजरूह, राजा मेहदी अली खान, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी जैसे लोग लिखते हैं। हमारे फिल्मी संगीतकार ने बहुत ही मधुर धुनें बनाई इनके साथ, खासकर नौशाद साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम साहब, मुझे तो खासकर लता मंगेशकर जी और जगजीत सिंह की सभी गजलें जो उन्होंने फिल्मों में गाई बहुत ही पसंद आती है। जी हाँ, हमारे सवाल जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, हमारे सवाल हैं हमेशा की तरह दो। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो सवाल हम आपसे करेंगे जब आप उनका जवाब देंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी गजल को आप पसंद कर रहे हैं, वैसे तो आपको जो गीत पसंद है वो सर आंखों पर, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन आज हमने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में वो गजलें चुनी हैं जिसमें 5 शेर हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण है और प्रत्येक शेर का अंत रदीफ यानी वाक्यांश शब्द यानी वाक्यांश से होता है और जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द या वाक्यांश से होता है और काफिया और जो रदीफ ही वही मिलकर जो है इस गजल को बनाते हैं, है ना, शेरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की गजल आप हमें बताएं जो आप पसंद करते हैं। बहरहाल मैं आपको आज के सवाल बता देती हूं। हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बहुत निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत उर्दू में भी लिखे। हालांकि हमारे कुछ श्रोताओं ने उनका नाम लिख भी दिया है गीतकारों का, लेकिन फिर भी आपकी नजर में ऐसे कौन से गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मी गीत लिखे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी, बस उन गीतकारों का नाम लिखना है। और हाँ, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारे जो फिल्मी गजलें हैं उनकी कुछ खास पंक्तियां जिसने आपको, आपके दिल को झकझोर दिया हो, आपको पसंद हो, उसका जिक्र करें, यानी वो दो पंक्तियां हमें लिखकर भेज सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मुझे ये पंक्तियां बेहद पसंद है जो अभी आपने फिल्म अदालत की सुनी थी कि मुरझा चुका है फिर भी ये दिल फूल ही तो है, अब आप ही की खुशी से कांटों में सो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है, आपको इस तरह की कौन सी पंक्तियां पसंद है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एसएन त्रिपाठी का संगीत, बहादुर शाह जफर की रचना, आवाज मोहम्मद रफी साहब की, फिल्म का नाम लाल किला।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आइए मित्रों चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में। आज गजलों पर बात होगी, शायरों, गीतकारों और संगीतकारों ने कैसे गजल पर अपनी कलम चलाई, कैसे संगीत बजाया और किन कलाकारों ने अपनी आवाज से गजलों में रंग भरा, यही इस सफर में आज रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि उर्दू भाषा को तहजीब और अदब का प्रतीक माना गया है। उर्दू संस्कारों के इस गुलशन में गजल को सबसे मुकम्मल स्थान हासिल है। दिल तक असर करने वाले मखमली शब्दों से सजी गीत की विधा देश के हिंदी सिनेमा जगत को सराबोर किए हुए है। एक से एक बेहतरीन उर्दू गजलें हिंदी फिल्मों में पेश की गई है। किस तरह की कैसी गजलों ने मुंबईया फिल्म जगत को अपना सुहावना एहसास दिया है, इन पर प्रकाश डालने से पहले गजल को थोड़ा समझ लेना चाहिए। गजल का मतलब प्रारंभिक शेर और दोहा में कोई ज्यादा है विशेष फर्क नहीं होता। यदि कोई फर्क है तो यही कि मतला कई बहरों में लिखा जाता है और दोहा एक छंद में ही। मतला और दोहा दोनों ही दो मिसरों यानी पंक्तियों से बनते हैं और गंभीर से गंभीर विचार को संक्षिप्त भाव में कहने का भाव रखते हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत तरीके से गजल को समझाया है कि क्या है गजल। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई है। गजल के हर शब्द में बहुत ही गहराई होती है, भावों से परिपूर्ण होते हैं। मैं तो इस सफर में गजल फिल्म नायक सुनील दत्त जी और मीना कुमारी जी के गजल सुन रंग और नूर की सौगात किसे पेश करूं, मन में उतर जाती है और हर शब्द मोहम्मद रफी साहब की नूरानी आवाज भी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल भावनाओं की सबसे कोमल और गहरी अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेम की मधुरता है, मोहब्बत की गहराई है, विधा की कसक है, दर्द की सच्चाई है और अंतर्मन की अनकही पीड़ा। संगीत भावुकता और शब्दों की सुंदर लय से सजी गजल हृदय को स्पर्श करती है। गजल केवल पढ़ी या सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये मन की उन भावनाओं का दर्पण है जिन्हें अक्सर कह पाना संभव नहीं होता। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलें जो हैं फिल्मों में केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने के लिए रखी जाती हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही निराला होता है और उन गजलों के बीच शायरी तो जैसे सोने पर सुहागे का काम करती है जो सुनने वाले के दिल को छू जाती है। गजलों में अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को इतनी गहराई से पर्दे पर उतारा जाता है कि मानो वो हमारे ही मन का हाल बयां कर रही हो। तो आज का सुरीला सफर उन्हीं बेहतरीन गजलों से भरा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप गजलों को इतना पसंद करते हैं और इतनी गहराई से अपने जज्बात पेश कर रहे हैं। हमारे वो श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, वो तुरंत हमें ज्वाइन करें। www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो हमारे परिवार का, विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं मिर्जा गालिब फिल्म की गजल आवाज सुरैया की। रचनाकार मिर्जा गालिब और गुलाम मोहम्मद साहब का, यानी गुलाम मोहम्मद साहब का।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा, जब तक फिल्मों में गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब का उल्लेख या कोई भी गजल न लिखी जाए तो शायद गजल को सुनने या गजल गायकी की जानकारी में कमी है, ये कहा जा सकता है। माफ करें, मेरे विचार इस मामले में अलग हैं। तलत साहब गजलों और फिल्मी गजलों के बादशाह हैं और शायद ही किसी श्रोता ने उन्हें यहाँ याद किया है। गजलों पर 10-12 कमेंट छाप दिए गए हैं बिना सोचे समझे, लेकिन गजल को किसी ने भी महसूस किया है वो नहीं दिख रहा। आज तलत साहब की गजलें शामिल होंगी, यही उम्मीद है। बिल्कुल होंगी, आप कार्यक्रम को सुनते रहिए। और आपने बिल्कुल सही लिखा कि जब गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब को याद न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर मुझे लगता है कि गजलें वाकई में हमारे संगीत का एक अभिन्न अंग है। जो सुरीला सफर में आज के शब्दों पर गाने होंगे वो जरूरी दिल को छू जाएंगे। गजलें तो जैसे हमारे दिल की धड़कने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छत पर धूप का एक टुकड़ा फैला था और रिकॉर्ड प्लेयर पर लता जी की आवाज में एक गजल अपने ही पूरे शबाब के साथ फिजाओं में तैरती है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गजल सुनकर कोई गहरी संवेदना मन को छूती है। ऐसे लगता है हवाओं से कोई आहट मन को सहला रही है। गजल की दुनिया बहुत बड़ी है। गजल ने अपने चाहने वालों के दिलों में एक सुंदर संसार रचा है, भावनाओं का खूबसूरत संसार बुना है गजल ने। तभी तो ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जीवन की हर उदासी में, हौसले में, विश्वास में इन गजलों ने कुछ सीली सी आवाज में समझाइश दी है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक। वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही क्लासिक तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संभावित शब्द आपने लिखे हैं। अरे जब मैंने खासतौर से ये कोशिश की कि हम अपनी इबारत में शब्द कम लिखें और ऐसा टेक्स्ट लिखें जिसे आप समझ पाएं, तो आप

अपने शब्द लेकर हमारे सामने आते हैं। चलिए, आपके शब्द हैं गजलें, जज्बात, दिलों को शायरी, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प। बिल्कुल, जहां गजल है वहां ये भाव होते ही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजलों के लिए एक प्यारी सी बात, गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। हर शेर किसी न किसी दिल की कहानी कह जाता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि संगीत की सृजनात्मक श्रृंखला में पुनः बिखरे मोतियों को एकत्रित कर नई माला में पिरोकर सफर को नई मनोरंजक दिशा प्रदान करती हुई इबारत है आज की। गजल मन को स्पर्श कर दिलों को झंकृत करती है, कहीं प्रेममय दिलों के तारों को छेड़ती है तो कहीं टूटे दिलों के जख्मों पर मरहम का काम करती है। गति धीमी मगर असर गहरी करने में गजल दिलों को वो मंजिल प्रदान करती है जिसकी तलाश में तन्हा दिल हसरतें रखता है। गजलों में सुरीला सफर गुजारने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत सुंदर, हमारे श्रोताओं ने बहुत ही गहराई से अपनी इबारत हम तक पहुंचाई है। तो हमारे सवाल आपको याद है ना, हमने आपसे पूछा था कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उतने ही निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल आपसे था कि फिल्मी गजलों में कुछ खास पंक्तियां जो आपके दिल को छू गई हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं आप। और अब पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। फिल्म का नाम है ममता, गायिका लता मंगेशकर। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म ममता की ये गजल सुनी। हमारे एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत केवल एक लेख नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास की एक सच्ची समझ है। ये लेख सिनेमा और शायरी के गहरे रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। लेखक ने इस बात को बहुत संजीदगी से रेखांकित किया है कि गजलें फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि किरदारों की खामोश जुबां होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर गजलों के साथ है। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैं तो सिर्फ दर्द दिल की बात सुनाता हूँ। हिंदी फिल्मों में बहुत सी गीत ऐसे हैं जिनका मूल रूप उर्दू रूप थोड़ा सा अलग होता है। मिर्जा गालिब जाने माने गजलकार हैं। साहिर, लुधियानवी, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी ऐसे बहुत से शायरों ने अपनी गजलें फिल्मों के लिए दी हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, ये मेरी सबसे प्यारी गजल है। आज के सुरीले सफर में इस गजल को शामिल करने की मैं मंदाकिनी से प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो मेरा दिल इस प्रोग्राम में नहीं लगेगा। अरे, हमने तो इस फिल्म की दूसरी गजल आपको सुनवाई और हम उम्मीद करते हैं वो गजल आपको पसंद आई होगी। न किसी की आंख का नूर हूँ, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल दिल के भावों को, दुख और प्रेम को बयां करती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज सुरीला सफर में गजलों की बारिश होगी। फिल्मी और गैर फिल्मी गजल तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिल्मों में गजल के माध्यम से अंतर्मन के सभी उद्गारों को व्यक्त करता है। शांत वातावरण में गजल को सुनने का एक अलग ही मजा है। बाकी आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजल सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर के रात के सन्नाटे में और भी सुकून मिलता है। गजल का नाम लेते ही पहला नाम जगजीत सिंह जी का आता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरबी भाषा से उत्पन्न एक लोकप्रिय काव्य और संगीत शैली गायन शैली यानी गजल, जो स्वतंत्र दोहों की लयबद्ध तुकबंदी होती है, दोहराए जाने वाले भाव, मीने शब्दों की अदृश्य श्रृंखला यानी गजल, जिसे जादुई आवाज, शब्द उच्चारण और बेमिसाल स्वाभाविक अदायगी से अनुभव किया जा सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत अभिजात गजलें दिखाई देती हैं जिसका जिक्र करें समझ में नहीं आता। एक बात सच है कि आज हमें लता जी, आशा जी, रफी जी के साथ तलत महमूद, पंकज उदास, हरिहरन, गुलाम अली जैसे बहुत सारे कलाकारों की शायद आवाजें सुनाई देने वाली हैं। और आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज गजलों की विदा पर प्रोग्राम लेकर आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। जो गजल भूली बिसरी यादों में है सुनने को मिलेगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी अपनी पसंद की गजल हम तो हैं, पर देश में निकला होगा चांद। अच्छा, ये गजल आपको बेहद पसंद है जो अंतर्मन की पीड़ा को दर्शाती है, ये दौलत भी ले लू वाली। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन गजलें सुनने को मिलने वाली हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, आप इतनी गहराई के साथ अपनी इबारत पेश कर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना है, तलत महमूद की आवाज़ है, फिल्म का नाम पतिता यानी पतिता फिल्म की ये गज़ल।

तलत महमूद की आवाज थी और फिल्म का नाम था पतिता। और दोस्तों, ये शुद्ध हिंदुस्तानी गजल जिसमें उर्दू का कोई अंश नहीं था, आपने अगर इसको ध्यान से सुना होगा तो महसूस भी किया होगा। और शैलेंद्र सबसे जटिल अवधारणाओं को जो कि सरलतम भाषा में व्यक्त करने में माहिर थे, उन्होंने मतलब जटिल से जटिल बात को वो कितने सरल शब्दों में कहते थे, इस गजल में हमें नजर आता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी ये जो कविता है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि वो लिखते हैं हमारे सबसे मधुर गीत में है वो जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुरों में गाते हैं। तो ये गीत एक ऐसी ऐसे साथी को सांत्वना और दिलासा देता है जिसने बहुत दुख झेला है और जिसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे प्यार का दूसरा मौका मिला है, है ना। तो देखिए ना कितना सुंदर तरीके से शैलेंद्र ने इस गजल को रचा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। और हाँ, हम अब आपके जो उत्तर है उसका इंतजार कर रहे हैं। आज आपने उत्तर देने शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गजल वो पसंद करें जो हमारे नियमों का पालन कर रही है, हमारे यानी गजलों के नियमों का पालन कर रही है। कोशिश कीजिए जानने की, समझने की उस गहराई को कि आखिर कोई गीत गजल कब कहलाया जाता है। आइए सुनते हैं नक्श लायलपुरी की रचना, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम दिल की राहें।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लिखते हैं कि फिल्मी गजलों के अलावा भी गैर फिल्मी गजल भी काफी लोकप्रिय है, खासकर गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह, पंकज उदास और तलहत अजीज की गाई जो गजलें हैं हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि गजलों के बादशाह मदन मोहन पहले नंबर पर ही आए, लता मंगेशकर, मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण, यूं हसरतों के दाग, ये गजल बहुत ही पसंद थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिर छेड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वह क्या शुरुआत है, आनंद को बयां करना मुश्किल है आज, मदन मोहन फिल्मी गजल में उनका कोई सानी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तलत साहब का गाया हुआ ये गम है दिल क्या करूं और ये क्या जगह है दोस्तों, गजल बहुत पसंद है। वहीं हमारा एक सवाल था कि जो अधिकांश हिंदी गीतकार हैं वो कौन कौन है जिन्होंने उर्दू में भी लिखा है। हमारे श्रोता जवाब दे रहे हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, गुलजार साहब, जावेद अख्तर, बहुत खूब। और एक श्रोता लिखते हैं कि उर्दू और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, तलत महमूद, लता जी, तलत अजीज की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलजार और जावेद अख्तर साहब इस श्रेणी में आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा करते थे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला गुलाम अली साहब की, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बड़ी बारीकियां सजोई है आज के कार्यक्रम में, गजलों के रदीफ, काफिया, मिसरा, गजब है आज का कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान, ये सभी हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1837 से 1857 तक शासन करने वाले भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, इनके जो गजल है वो इन्हें बहुत पसंद है। वहीं राजेंद्र कृष्ण और साहिर लुधियानवी को लोग हिंदी और उर्दू में ज्यादा पसंद करते हैं। और न किसी की आंख का नूर

इस गजल को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और वो कह रहे हैं कि ये गजल हमारे दिल के बहुत करीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, निदा फाजली, जावेद अख्तर और गुलजार साहब इस श्रेणी के गीतकार हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, ये जो बोल हैं वो मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गैर फिल्मी गजल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये गजल हमें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की मेरी लिस्ट में ये गजल न किसी की आंख का नूर हूँ, ये बहुत ही प्यारी गजल है जो इन्हें बेहद पसंद है। आइए सुनते हैं आरजू फिल्म की ये गजल, आवाज तलत महमूद साहब की, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, अनिल बिश्वास का संगीत।

दौलत महमूद को अभी आपने सुना फिल्म आरजू में। हम आपको बता दें ये 1950 की फिल्म थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद आती है। साथ ही तुमको देखा तो ये ख्याल आया और दिखाई दिए यूं कि खुद बेखुद किया, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल आज शायर है गम एक नगमा, ये पंक्तियां हमें बेहद अच्छी लगती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बेकरारी का आलम न पूछे महोदया, कार्यक्रम सुनने के लिए हमने क्या क्या किया। अरे वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई ही गई, गजल के हर शब्द में बहुत गहराई होती है और आपने एक गजल का जिक्र किया है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताना चाहूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, चंदन दास की ये जो गजल गैर फिल्मी गजल है ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि

पंडित भरत व्यास के सुमधुर नायाब कर्णप्रिय गीतों से सजी आज की यादों की महफिल थी। ये कार्यक्रम भी हमें बेहद पसंद आया। एक श्रोता ने लिखा है कि गजल पहले विशिष्ट लोगों की महफिल में ही गाई जाती थी और आम जनता के बीच इतनी लोकप्रिय नहीं थी, पर इसे सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय करने का काम जगजीत सिंह और पंकज उधास ने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं मंदाकिनी जी, जहां फिल्मों की एल्बम में हम बात करें तो हमने लाइव ऑडिटोरियम में हमने सुना है, मतलब लाइव प्रोग्राम सुना है किसी ऑडिटोरियम में, और गजल के दीवानों के दिलों को सीधे छू लेता है। इसे सुनने का आनंद तब आता है जब हम एकांत में आंखें बंद करके सुनते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे गजलें अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को गहराई में उतार रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तलत महमूद की गाई सबसे प्रसिद्ध और सदाबहार गजल फिर वही शाम वही गम, जो वो अपनी मखमली और थरथराती आवाज में गाते हैं, वो इन्हें बेहद पसंद आती है। इस तरह से हमारे श्रोता अपने अपने पसंद का जिक्र कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां आरा फिल्म की तेरी आंख के आंसू पी जाए ऐ मेरी तकदीर, ऐसी मेरी तकदीर कहां, ये हमें बेहद पसंद आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिल्म गजल की ये गजल मैं आपको सुनवा रही हूं। बोल है नगमा और शेर की बारात किसे पेश करूं। और एक बात यहाँ हम कहना चाहते हैं कि अक्सर हम इस फिल्म का जो गीत है रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, इसे हम गजल समझते हैं और हमारे कई श्रोताओं ने इसकी फरमाइश भी की है कि ये हम सुनना चाहते हैं। असल में दोस्तों ये गजल नहीं है। अगर मतलब आपने कभी इसके बोलों पर ध्यान दिया हो तो आपको पता भी चलेगा कि ये दो पंक्तियों के छंदों में नहीं है, बल्कि इसका जो दूसरा गीत है नगमा और शेर की सौगात, जो मैं अब आपको सुनवाने वाली हूँ, हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गजल की शर्तों में आती है। ये गजल उस नियम, वो दायरा जो है गजल का, उसके अंतर्गत आती है। तो आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की लिखी ये गजल। फिल्म का नाम गजल, आवाज लता मंगेशकर की, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था गजल। और अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी के विचार, आप सभी की पसंद हमें जानने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अब अंत में हम ये बताना चाहेंगे, खासतौर से मैं, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस शायर की कौन सी पंक्ति आपको पसंद है, तो मैं कहूंगी बहादुर शाह जफर की ये पंक्तियाँ मुझे आज भी अंदर तक भिगो देती हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी न मिली कुए यार में। इस पंक्ति को जब मैं पढ़ती हूँ, जानती हूँ, महसूस करती हूँ, तो आँखों से अश्रु अपने आप बह निकलते हैं। आपने भी अपने विचार रखे, अपने पसंद की पंक्तियां, अपने पसंद के गीतकारों का जिक्र किया, गजल क्या है आपने उसको महसूसा। आज के इस कार्यक्रम को, इस सफर को महसूस करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आज से 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय, अन्य न्यायाधीश, सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक समेत 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यह सम्मेलन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ट और बिहार जुडिशियल एकेडमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में गिरफ्तार भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव मुमुक्षु कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत यह कार्रवाई की है। मुमुक्षु कुमार चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अगला आदेश जारी होने तक उनका निलंबन प्रभावी रहेगा। पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोप में स्थानीय थाने में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 27 लोगों के खिलाफ नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपितों ने निर्माण कार्य रुकवाया और मौके पर मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट की। राज्य सरकार ने झारखंड से बिहार में प्रवेश करने वाले अवैध और ओवरलोडेड गिट्टी लदे वाहनों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों की सघन जांच करने और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि ओवरलोडेड वाहनों से सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है और सरकारी राजस्व को भी नुकसान होता है। शेष समाचार एक

0: अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से श्री यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने नेपाल की नागरिकता रखने वाली 10 महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया के तहत शपथ दिलाई। इन सभी महिलाओं का विवाह अररिया जिले में हुआ है और वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ अररिया में निवास कर रही हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। पूर्णिया के ढेंगरा घाट में सबसे अधिक 28.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। मुजफ्फरपुर जिले के सिवायपट्टी थाना क्षेत्र में आज तड़के अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यवसायी रोज की तरह टेढ़ा चौक स्थित मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे, तभी हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना के बेउर में पिछले दिनों एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि भूमि विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया था। वैशाली जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ लाभुकों के लिए घर घर खाद्यान्न पहुंचाने की नई व्यवस्था शुरू हो गई है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने हाजीपुर सदर प्रखंड की इस्माइलपुर पंचायत के हरोली गांव से इस योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ شرف الہدا سے علاقائی خبریں سنیے۔ بودھ گیا واقع مہابودھی ثقافتی مرکز میں آج سے 3 نئے مجرمانہ قانون کے مؤثر عمل درآمد کے لیے 2 روزہ ریاستی سطح کی کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس کا افتتاح وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کیا۔ کانفرنس میں سپریم کورٹ کے سینئر جج، پٹنہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس میناکشی مدن رائے، سبھی ضلعوں کے سینئر ایس پی اور ایس پی سمیت 200 سے زیادہ نمائندگان شامل ہو رہے ہیں۔ یہ کانفرنس بہار پبلک ایڈمنسٹریشن اور بی پارڈ و بہار جوڈیشل اکیڈمی کے ذریعہ منعقد ہو رہی ہے۔ ریاستی حکومت نے مشہور ٹینڈر گھوٹالے میں گرفتار محکمہ تعمیرات عمارت کے اس وقت کے جوائنٹ سیکرٹری مومچھو کمار چودھری کو فوری اثر سے معطل کر دیا ہے۔ محکمہ جنرل انتظامیہ نے بہار سرکاری سیوک ضابطہ کے تحت یہ کارروائی کی ہے۔ مومچھو کمار چودھری فی الحال عدالتی حراست میں ہیں، اگلے حکم تک ان کی معطلی مؤثر رہے گی۔ مشرقی چمپارن کے پیپرا کوٹھی میں مجوزہ واٹر پارک پروجیکٹ کے تعمیراتی کام میں خلل ڈالنے کے الزام میں مقامی تھانے میں آر جے ڈی ایم پی سدھاکر سنگھ سمیت 57 افراد کے خلاف اطلاع اول درج کی گئی ہے۔ 27 افراد کے خلاف نامزد اور 30 نامعلوم لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمین نے تعمیراتی کام میں خلل ڈالا اور موقع پر موجود عملوں کے ساتھ مار پیٹ کی۔ ریاستی حکومت نے جھارکھنڈ سے بہار میں داخل

होने वाले गैर कानूनी और ओवरलोडेड गिट्टी लदी गाड़ियों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी सरहदी जिलों के जिला मैजिस्ट्रेट्स को खत लिखकर ऐसी गाड़ियों की सख्त जांच करने और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। खत में कहा गया है कि ओवरलोडेड गाड़ियों से सड़क तहफ्फुज मुतासिर होता है और सरकारी रेवेन्यू को भी नुकसान होता है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कोऑपरेटिव वज़ीर रामकृपाल यादव से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने डॉक्टरों से उनकी सेहत से मुतल्लिक मालूमात हासिल की और उनकी जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। अररिया के ज़िला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन ने नेपाल की शहरियत रखने वाली 10 खवातीन को हिंदुस्तानी शहरियत की हुसूलियाबी के अमल के तहत हल्फ बर्दारी कराई। इन सभी औरतों की शादी अररिया ज़िले में हुई है। फ़िलहाल वो अपने ख़ानदान के साथ अररिया में मुकीम हैं। रियासत में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ने से बारिश की हलचल में कमी आई है। इसके सबब ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम पारा हरारत में भी इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के बमौजिब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के शमाली और जुनूबी हिस्सों में कुछ मकामात पर हल्की बारिश दर्ज की गई। पूर्णिया के ढेंगरा घाट में सबसे ज़्यादा 28.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम की कयास आरआई में कहा गया है कि आज रियासत के बेशतर हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। मुजफ्फरपुर ज़िले के सिवाई पट्टी थाना हलका में आज सवेरे जराम पेशा अनासिर ने एक किराना दुकानदार को गोली मारकर हलाक कर दिया। दुकानदार मामूल के मुताबिक डेरा चौक वाके मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे, तभी हमला आवरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जराम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। पटना के ब्योर में पिछले दिनों एक नौजवान की हलाकत के मामले में पुलिस ने 4 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ज़मीनी तनाज़ा में हलाकत को अंजाम दिया गया। वैशाली ज़िले में कौमी अजनास तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत 80 बरस और उससे ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग मुस्तफ़ीज़ों के लिए घर घर अनाज पहुँचाने का नया निज़ाम शुरू हो गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट वर्षा सिंह ने हाजीपुर सदर ब्लॉक की इस्माइलपुर पंचायत से इस मनसूबे को शुरू किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के 3522 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 18 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ssc.gov.in। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अप्रेंटिस के 550 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है।

0: आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.bfsissc.com। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.sbi.bank.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के समय 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
5: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि

0: बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
0: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा

0: पर घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार पांचवें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था छोटी बहन। गीतकार थी हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म अमरदीप का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोसले की आवाज

तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोंसले की आवाज में था। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे मदन मोहन। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म अमरदीप से, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र की धुन है।

0: और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस
1: जी
0: सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
2: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मुकुल रॉय के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। गाने वाले कलाकार गीता दत्त और हेमंत कुमार, फिल्म का नाम डिटेक्टिव।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का दो गाने सुनिए। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और मोहम्मद रफी हैं, शब्दकार कमर जलालाबादी और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में

0: सासुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: फिल्म काला पानी का गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म फागुन का गीत सुना। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा था और ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम में लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। ये हैं सदर नागपुर से कमल गोलचा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता गोलचा और इनका पूरा परिवार। अगला खत हमें मिला है कोलार रोड भोपाल से। लिखने वाले हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले। ये खत है ग्राम पंचायत काड़े गांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायल का और मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खानदान का गीत। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीत खयाम साहब का।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं। आप सबने हमें खत लिखा है, ये हैं काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, हर्षेल रंभाड़े, वैष्णवी रंभाड़े, जानवी रंभाड़े और बनर्जी और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं ये। इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया,

ये खत हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का, और ये है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीर सागर और संजय चौहान। आप सभी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की। गीत को इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। ये हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। ये खत

हमें लिखा है बीड शहर से रंजीत कुमार नामदेव, ठोराल प्रकाश दादा और इनके परिवार वालों ने, जिला नांदेड़ शहर से प्रकाश जैन, सूरज जैन और संगीता जैन ने यह खत लिखा है और इसी गीत को सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा हमारे नियमित श्रोता। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गोलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गोलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। गांव दलपतपुरा से सुनने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का दो गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस, बिमला, सतीश अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी, पार्वती, राधा चंद्राकर का, और जिला बड़ौदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दुगाना।
1: मन चाहे।

0: इस युगल गान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: दोस्तों आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मदमाती ध्वनि। नववसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
2: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सकें।
1: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन

0: ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
1: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
2: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
1: ओह, हमारे साथ ये यज्ञ सेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीर सेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञ सेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
0: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ ही लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राज प्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी, उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: अति सुंदर।
1: महाराज देखा?
0: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया।

0: इसने तो इस गीत के बहाने अपने आप को आप पर न्योछावर कर डाला।
1: मैं भी यही समझता हूँ। सब इसने हमको संबोधित करके कहा है कि नाथ पशु पर अपनी ही समझो।
2: मालविका अब तू जा।
3: ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर कर
4: मैं
0: जी?
4: क्या

0: पूछूंगी। मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
1: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका हैं महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो

0: अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका है महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
1: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
2: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
3: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
0: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
2: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
1: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
2: दे, दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
1: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अब इसे अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
4: जो आज्ञा।
2: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
0: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया हो।
2: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि वैद्य ही अपने पास ही औषधि भी दे।
1: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
0: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
1: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्य का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह आर्य पुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
0: महाराज, सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
1: मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहस सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया, मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
0: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवा की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सकें।
0: महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
1: हम घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रानीवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम, सोचा कोई उपाय?
0: उपाय उपाय, हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
1: हम उसे मालामाल कर देंगे।
0: बकुला वलिका, समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ
4: आए गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो।

0: फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ,
1: अरे मालविका तुम आ गई।
2: दासी सेवा में उपस्थित है देवी। पांव में क्या बहुत कष्ट है?
1: ओ, इस दुष्ट गौतम के नटखट बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
2: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
1: तो तुम बकुला बालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
2: जो आज्ञा।
1: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
3: ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। तुमने देखे तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
4: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा वसंत ऋतु हमसे मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा सह नहीं पा रहे हो क्या? ओह, ये प्रेम की पीड़ा। हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रोग। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं वे उतने ही कठोर होते हैं।
3: महाराज, तनिक धीरे से काम लीजिए। आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
4: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा। आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा?
3: चलिए झूला गृह की ओर।
4: झूला गृह की ओर?
3: हाँ हाँ। अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
4: हाँ, मान तो ली थी, परंतु
3: कैसी अचरज की बात है कि...
4: क्या हुआ?
3: उधर देखिए महाराज, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है?
4: क्या क्या मालिका आ रही है?
3: और क्या,
4: तो सब जवाब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही यह जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
3: लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
4: ये सीधे सादे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसमें इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं। गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हीं गिने फूल बचे रह गए हों।
3: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज?
4: मित्रों को ऐसा ही सूझा करता है। अरे मालिका अपने आप कुछ कह रही है, आओ मित्र, हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
3: लेकिन महाराज, अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
4: मित्र, हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
2: दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ दे तू मिलने की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है

0: खाना जिस तक अपनी पहुंची है, पूछे यूं सताकर तुझे क्या मिल रहा है।
1: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं, अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है।
2: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायक का बकुला वल्का उसके पास पहुंच गई।
1: अरे, ये बकुला वल्का साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है?
2: अरे, आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
1: अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
2: और नहीं तो क्या आपके लिए?

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं। लो सखी। हृदय, ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी, तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
1: वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
0: अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो। हाँ।
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपलें फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं।
3: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप भी अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
2: मन चाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
0: अरे निपुणिका, आर्यपुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
4: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे। आइए उन्हें ढूंढे।
0: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
4: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेंगुलता मंडप में बैठे।
0: अच्छा चल।
4: अरे ये क्या स्वामिनी?
0: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
4: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
0: अरे क्या कह रही है?
4: देवी तनिक उधर देखिए, उधर वहां अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
0: मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
4: मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूपुर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
0: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
4: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
0: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये सात सिंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।

0: देखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
1: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी, ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
0: सच सच कह दूं, ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
1: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
0: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ
1: लो, तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
0: आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है। लाओ अपना दूसरा पैर दो। मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
1: सखी, ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
0: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ,
1: मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए।
0: मुझे ही नहीं, तुम महाराज को भी प्यारी हो।
1: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
0: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है। हाँ,
1: क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
0: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
1: सच? पर सखी, उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
0: अरे पगले, भौरों के डर से कोई कानों में आम्रमंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो, इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दूं? लो, अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो। अरे क्या सोच रही हो?
1: सखी, यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
0: अरे मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
2: वाह बकुलावली का वाह! मित्र, बकुलावली का ने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
3: महाराज उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
2: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं, ही अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
3: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
1: आई गौतम, महाराज भी
3: क्यों रही बकुलावलिका? सब कुछ जानती हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
1: आर्य गौतम, मैं आर्य,
0: इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की थी, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
2: अच्छा तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
3: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
2: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसले कोमल बाया चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
1: सखी, महारानी को जाकर सूचना दी कि उनकी आज्ञा अनुसार हमने।
0: अरे पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
2: भद्री, तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
4: मालविकाग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का

0: Sound, camera, action!
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव
3: जी,
2: आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
3: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ।
2: हाँ।
3: और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी। वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
2: हाँ हाँ।
3: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
2: बिल्कुल।
3: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
2: हाँ।
3: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है, क्योंकि दोनों गाने वही थे।
2: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की,
3: नहीं,
2: थी कि चुनरिया पर ही
3: नहीं, नहीं, नहीं। मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
2: आपस का
3: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5000 चुनरिया तो नहीं है।
1: हाँ।
0: और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया

0: मेरे लिए भी
1: अच्छा
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा, दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग,
1: हाँ
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बैल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: वो
1: सर,
0: जगह ही रहता था
1: अरे
0: मतलब, और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के। हाँ ना भाई साहब, इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया
0: चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: वो
0: तो
1: कौन सा गाना था?
0: रंगली नी चुनरिया ऐसा एक गाना था, इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने
0: जी
1: कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए।
0: जी
1: इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नय्यर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा
0: ये सारी फाइलें जो है ना, वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहाँ तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो ना ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का
1: जी
0: अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी जी
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया है, मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं, उसमें
1: हाँ
0: क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया, और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना
1: मानना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी, मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंद्र जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया, और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह
0: तो इतने ग्रेट थे,
1: जी
0: वरना कहाँ रविंदर जैन और
1: जी
0: कहाँ सुधाकर शर्मा,
1: जी
0: क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
1: सही
0: देखिए
1: बात है।
0: रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब

0: इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते।
1: जी
0: तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
1: अच्छा
0: और कश्मीर का राजमा है, एक
1: अरे
0: प्लेट में ला के दे।
1: हाँ
0: मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए
1: हाँ
0: हैं,
1: भूख
0: भूखे
1: लगी
0: प्यास लगी
1: होगी
0: होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन
1: बहुत
0: बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत खूब
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूं, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
1: गाना कौन सा है
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूं।
1: अच्छा।
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूं, और मैं कहा सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला, कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा
0: मैं
1: जी,
0: बेचैन हो गया। हमने
1: हाँ
0: कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूं ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया,
1: अच्छा
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि

0: मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूं, मैं ये करता हूं। मैं और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे 5 गाने तो सेलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा। तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप, और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए।
1: जी
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं। देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया। और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है,
1: अच्छा, धरती की हलचल।
0: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है। ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का, और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार
0: अब
1: विजु
0: पहली
1: शाह।
0: बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था, तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए। बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लक्की सब में है ना,
1: हाँ
0: दावा नहीं कर सकते अपन।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैंने ठीक है
1: ओहो
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ
0: मैंने उनके घर फोन लगाया, मिसेज को वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये
1: ओ
0: मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था।
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बन
0: और मेरे
1: गया।
0: लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया।
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और
0: जी
1: कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये
0: जी
1: बातें, ना जानने को
0: जी
1: मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे। आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके
0: जी
1: बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाकिनी जी आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूं, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा, और हम लोग काम करेंगे।
1: जी
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं। तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं। वो ट्यून जो है ना ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है,
1: अच्छा,
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है
1: हाँ
0: कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे गाड़ी में बैठे हुए।
1: हाँ हाँ
0: तो मेरे को हिमेश भाई बोले सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक

0: नहीं आया हो।
1: हाँ
0: मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार,
1: हाँ
0: ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे? बोला
1: बिल्कुल
0: मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के
1: बिल्कुल
0: कितने हैं?
1: बहुत
0: तो सर ये बनाते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है,
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने
1: एकदम
0: तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि
0: तो
1: चौहान ने गाया है,
0: बहुत
1: और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा है कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल
0: मिलता
1: नहीं है।
0: है। ये
1: मैं
0: तो सर फीलिंग्स का एक मामला है, जहां एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कुछ चीज को
1: हाँ,
0: क्रिएट कर रहे
1: लेकिन
0: हैं।
1: नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंद्र जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है। तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊँगा और मैं आपके साथ करूँगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ
1: मैं
0: जाऊंगा,
1: आ
0: वक्त
1: जाऊंगा तब,
0: दूंगा।
1: वक्त दूंगा तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था तो उसमें अगम निगम साहब, वो
0: सोनू निगम
1: गाना
0: जी के पिताजी।
1: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहां कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन
0: मिला।
1: मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में। एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: उसमें कोई
0: बहुत
1: बात
0: बड़ी बात
1: नहीं।
0: आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार, उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए,
1: जी
0: तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं हैं और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है
1: नहीं नहीं
0: आपने,
1: नहीं
0: और
1: नहीं
0: आपसे
1: नहीं
0: कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना,
1: हाँ जी
0: तो
1: जी
0: ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं। ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
1: ये मुझे भी नहीं पता। वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
0: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें
1: नहीं
0: आपके
1: नहीं
0: गीतों
1: नहीं
0: को?
1: नहीं नहीं अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है, जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ आप ही लिखो। तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है, तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
0: वो लिख
1: उसको
0: लेता
1: ले
0: है।
1: जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
0: अच्छा
1: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता। हमने
0: अच्छा
1: फायदा क्या इसका है, तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है।
0: हाँ
1: तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो क्या, अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सकपका गया। और वो इतने ग्रेट हैं वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ,

0: उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा, तू लिख ले। तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा,
1: तो
0: मैंने
1: हाथों
0: लिखा।
1: हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
0: बिल्कुल
1: आपको
0: लिखवा दे।
1: सिचुएशन बतानी पड़ती है ये एक्टर
0: हाँ
1: है
0: जो
1: ये
0: भी
1: एक्टर।
0: सिचुएशन बताएंगे
1: बहुत खूबसूरत।
0: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
1: हर रिकॉर्डिंग में आप
0: हर
1: रहते
0: रिकॉर्डिंग में
1: हैं।
0: मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है, मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीज़ें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती है।
1: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
0: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी,
1: नहीं।
0: लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
1: अच्छा।
0: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद भी आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी
0: एक
1: पसंद का।
0: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं,
1: जी
0: इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणा का हूं और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं, वीना कैसेट कंपनी
0: जी
1: हमारे केसी मालू जी की है,
0: बिल्कुल
1: वो अभी भी उनका मैं काम कर

0: आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणा का हूँ और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी
1: जी
0: हमारे केसी मालू जी की है,
1: बिल्कुल
0: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ। वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है, वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
1: जी
0: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से,
1: उड़ली,
0: ओडली
1: अच्छा यहां पर भी
0: म्यूजिक,
1: चुनरी आई।
0: चुनरिया अंडरस्टूड है।
1: हाँ जी
0: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
1: अरे वाह,
0: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए
1: अच्छा
0: और हम लोग घर पे गए। तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
1: जिनका जिक्र अभी आप कर
0: जिक्र
1: रहे थे।
0: किया। तो मैंने कहा यार सतीश जी मेरे लिए इतना काम कर दो यार। उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं। सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं
1: अच्छा
0: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी हैं ना, जैसे सतीश जी कई बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूं, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूं, जो है
1: जी
0: वो है।
1: जी जी
0: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या पैसा।
1: हाँ
0: तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो
1: क्या
0: मेरे को
1: बात
0: यकीन
1: है,
0: नहीं हुआ
1: बात
0: कि
1: करो,
0: अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं
1: एक
0: 1 रुपया
1: रुपया
0: नहीं
1: नहीं
0: लूंगा।
1: लूंगा। वाह अद्भुत,
0: ये बहुत ही अद्भुत,
1: बहुत
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदर कांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदर कांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा,
1: हाँ सही
0: लेकिन मेरी
1: बात है।
0: औकात ही क्या, मैं
1: हाँ
0: क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर
1: उनकी
0: पाऊंगा।
1: महानता देखिए आप, अमित
0: लेकिन
1: कुमार
0: उनकी
1: साहब की।
0: ग्रेटनेस देखिए, हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं,
1: जी
0: लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ, और
1: बहुत
0: मैं ईश्वर से दुआ करता हूं
1: सैल्यूट
0: कि
1: है उन्हें।
0: बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम।
1: बिल्कुल
0: ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: उन्होंने क्लियर किया।

0: मैं कुछ नहीं लेने
1: मैं कुछ
0: वाला।
1: नहीं लेने वाला,
0: बहुत बड़ी बात सर।
1: तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई हैं और मैं
1: हाँ
0: भावुक हो गई हूं।
1: नहीं
0: एक
1: नहीं
0: गाना पहले सुन लेते
1: एक गाना
0: हैं।
1: हम लोग सुनते हैं, मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी।

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना
0: गाना नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर। तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: नहीं, आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं

0: उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता
1: वो
0: है।
1: हमेशा कुछ अलग ही करते हैं ना,
0: हाँ जी जी
1: तो
0: जी
1: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं
0: बहुत सुंदर
1: और
0: कर
1: वो हो
0: रहे हैं
1: गया।
0: ये। सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को। क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
1: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं एआई से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं,
0: अच्छा,
1: बट
0: लेकिन
1: एआई जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला
0: बिल्कुल,
1: पाएगा,
0: सबसे बड़ी
1: वो
0: बात है।
1: कहानी नहीं ला पाएगा,
0: वो साउंड
1: टेक्निकली
0: कर
1: वो
0: देगा।
1: साउंड कर देगा लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
0: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के
1: जी
0: निर्माता
1: जी
0: नए नए आ रहे हैं, नई
1: बिल्कुल
0: नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं,
1: हाँ
0: बहुत
1: बहुत
0: नए सब्जेक्ट के
1: बिल्कुल
0: साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
1: मैं बिल्कुल तैयार हूं, तभी आज तक काम कर रहा हूं। बट यहां पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोर्ड पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फूहड़ पन्ने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
0: बहुत प्यारे
1: लेकिन
0: तरीके
1: बड़े
0: से,
1: प्यार से कहा, एक
0: क्लासिक
1: अंदाज
0: तरीके
1: से
0: से।
1: कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूं, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
0: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, 5 पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और
1: जी जी
0: ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया। जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
0: वो कालजयी हो गया।
1: वहां वो ऐसा नहीं हो सकता है।
0: जी
1: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
0: जी
1: देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूं तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
0: बिल्कुल।
1: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं मैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है,
0: बिल्कुल
1: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही। तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस, काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल। मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
0: जी 73 से 82 तक आपने इंतजार किया।
1: इंतजार किया।

0: फिर 82 से 97 तक इंतजार किया,
1: दूसरे गाने का?
0: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए।
1: ओहो
0: 97 में गाना बाहर आया, ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप
1: पेशेंस।
0: डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए, और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
1: जी
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ
1: अच्छा।
0: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, और उसमें कोई 300 350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके उंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला, ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया। मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और मैं था, अरे यार मैं तेरे को भी फोन लगा रहा हूं तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूं, तब तक तू आ गया। वहां जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, तीन गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए, अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपये थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो
1: बिल्कुल।
0: तो कुछ ना
1: आपसे
0: कुछ
1: बात
0: होगा।
1: करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी,
0: जी
1: और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं। इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध
1: जी
0: भारती यही रहा है, यहीं
1: जी
0: से मेरी शुरुआत थी।
1: जी
0: और आज मैं उस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा है, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे, और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन सब से मैं मिला हूं।
1: जी और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं। आप विविध
0: धन्यवाद
1: भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को
0: जी।
1: हम बोलते हैं कि चलिए, गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया,
0: जी
1: आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: जी और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: जी तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिचायक है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक ऐसा औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई जमीन पर बनाया जाता है। 90,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन में केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ई जागृति को परिष्कृत किया गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं।

0: में लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 2:30 पर पराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम युववाणी की प्रस्तुति होगी शाम 5:30 पर। शाम 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। शाम 6:05 पर भोजपुरी समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम किसान वाणी, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी शाम 6:10 पर। शाम 6:40 पर सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। गुड इवनिंग रोहतास, सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:15 पर। शाम 7:25 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, वहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल।

रात्रि 8 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8:15 पर ई मनपसंद का शेष भाग आप सुनेंगे। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या रिले किया जाएगा। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा की प्रस्तुति होगी रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे गजल का प्रोग्राम महफिल। रात्रि 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। रात्रि 10:30 पर सुनिए हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। हिंदी समाचार रात्रि 11 बजे और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

जय हो बजरंग बली एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे मुस्कान अग्रवाल की आवाज़ में। श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो सेट और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम का अगला भजन हम आपको पहुँचाएँ, इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। इसी के साथ वंदन कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है।

हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। प्रस्तुत है युवा दोस्तों के लिए हमारा कार्यक्रम युवा वाणी।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का युवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम लोग बातें करेंगे सहकारिता है तरक्की का मंत्र, श्रमिक कल्याण के अग्रदूत गुलजारी लाल नंदा, और इसके अलावा कुछ फिल्मी गीत भी हम आपको सुनवाएंगे।

तो दोस्तों आइए सबसे पहले सहकारिता है तरक्की का मंत्र विषय पर बातें कर लें। दोस्तों सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर, यानी समानता और विश्वास के साथ कार्य करना। जब लोग अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सामूहिक हित के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो विकास की नई राहें खुलती हैं। यही भावना समाज, गांव, राज्य और देश की प्रगति का आधार बनती है। हमारे देश में सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है। ग्रामीण भारत में लोग खेती, सिंचाई, पशुपालन और अन्य कार्यों में एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं और सहयोग के बगैर ये सभी कार्य संभव भी नहीं है। इसी सहयोग की भावना को संगठित रूप देने के लिए सहकारी समितियों का गठन किया गया। इन समितियों ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों सहकारिता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे छोटे और सीमित संसाधनों वाले लोग भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। किसान यदि मिलकर उन्नत बीज खरीदें, आधुनिक तकनीक अपनाएं और अपनी उपज का सामूहिक विपणन करें तो उन्हें अधिक लाभ मिलता है। इसी प्रकार दुग्ध सहकारी समितियों ने लाखों परिवारों का की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज सहकारिता केवल कृषि

तक सीमित नहीं है। बैंकिंग, डेयरी, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, महिला स्वयं सहायता समूह और लघु उद्योगों में भी सहकारी संस्थाएं सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं। इन संस्थाओं ने लोगों को रोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन का अवसर प्रदान किया है। सरकार भी सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग सहकारी संस्थाओं से जुड़ें और आर्थिक विकास में भागीदार बनें। डिजिटल तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से सहकारी संस्थाओं की ओर अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी ने सहकारिता आंदोलन को नई दिशा दी है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाएं आज स्वरोजगार से जुड़कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। इसमें न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि पूरे समाज का विकास भी तेज हुआ है। युवाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि युवा आधुनिक तकनीक, नवाचार और उद्यमिता को सहकारिता से जोड़ें तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। सहकारिता केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जब हम साथ चलते हैं तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी अपनी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। आपसी विश्वास, पारदर्शिता और ईमानदारी सहकारिता की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए हम सभी सहकारिता की भावना को अपने जीवन में अपनाएं, मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें और आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। सच ही कहा गया है, सहकारिता तरक्की का मंत्र है। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में।

दोस्तों, अब आइए, बात मेहनत की चल रही है, मेहनत कश की चल रही है, तो चर्चा करते हैं श्रमिक कल्याण के अग्रदूत गुलजारीलाल नंदा जी के जीवन पर। आज उनका जन्मदिन भी है, तो आइए आज कुछ बातें कर लें गुलजारीलाल नंदा जी पर। दोस्तों, आज हम भारत के ऐसे महान व्यक्ति को स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्रमिकों, गरीबों और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और श्रमिक कल्याण के अग्रदूत गुलजारीलाल नंदा जी की। उनके जन्म दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आइए उनके जीवन और योगदान को याद करें। गुलजारीलाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को तत्कालीन पंजाब प्रांत के सियालकोट में हुआ, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। प्रारंभ से ही वे अध्ययनशील, संवेदनशील और समाज सेवा के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और श्रमिकों की समस्याओं पर गहन शोध भी किया। यही कारण था कि आगे चलकर वे श्रमिकों के अधिकारों के सबसे बड़े समर्थकों में गिने जाने लगे। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे महात्मा गांधी के विचारों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने असहयोग आंदोलन और अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कई बार जेल भी गए। उनका विश्वास था कि राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब उसका श्रमिक वर्ग सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर होगा। गुलजारीलाल नंदा ने अहमदाबाद के वस्त्र उद्योगों में श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच संवाद, सहयोग और विश्वास

वातावरण बनाने का प्रयास भी किया। उनका मानना था कि श्रमिक और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। यदि दोनों के बीच संतुलन और सम्मान बना रहे तभी देश की आर्थिक प्रगति संभव है। स्वतंत्रता के बाद उन्हें भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। उन्होंने श्रम, रोजगार, सिंचाई और योजना जैसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व भी किया। देश के विकास की योजनाओं को लागू करने और श्रमिक हितों की रक्षा में उनका योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत के इतिहास में एक विशेष तथ्य यह है कि गुलजारीलाल नंदा दो बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद और दूसरी बार सन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के पश्चात। उन्होंने अत्यंत शांत, संयमित और जिम्मेदार नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सत्ता को कभी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए देश को स्थित नेतृत्व सौंपा। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सादगी, ईमानदारी और निष्कलंक सार्वजनिक जीवन। उच्च पदों पर रहने के बावजूद उन्होंने कभी वैभव या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं की। उनका जीवन सादगी, नैतिकता और सेवा का आदर्श उदाहरण था। श्रोता, श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान को आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। उन्होंने श्रमिकों के बेहतर कार्य परिस्थितियां, न्यायपूर्ण वेतन, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक शांति की दिशा में अनेक प्रयास किए। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उनके मेहनतकश नागरिक होते हैं। उनकी असाधारण सेवाओं के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। यह सम्मान उनके आजीवन राष्ट्र सेवा, ईमानदारी और श्रमिक हितों के प्रति समर्पण का प्रतीक है। दोस्तों, आज हम श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की बात करते हैं, तब गुलजारीलाल नंदा के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो स्वयं से पहले समाज और राष्ट्र के हित को महत्व दे। आइए, उनके जन्म दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम श्रम का सम्मान करेंगे, ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाएंगे और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में अपना योगदान देंगे। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। और अब आइए एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोता दोस्तों, अब आइए युवाणी कार्यक्रम के आखिर में चर्चा करते हैं डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप एवं शिकलिंग कार्यक्रम पर। साथियों, आज का समय डिजिटल तकनीक का समय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कृषि, व्यापार और सरकारी सेवाएं, लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे समय में युवाओं के लिए केवल डिग्री ही नहीं बल्कि डिजिटल कौशल भी उतना ही आवश्यक हो गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी संस्थानों और उद्योग जगत के सहयोग से युवाओं के लिए इंटर्नशिप और स्किलिंग कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना तथा उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप विकास तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही अनुभवी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से वास्तविक परियोजनाओं पर कार्य करने का अवसर भी मिलता है। इंटर्नशिप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि युवाओं को कार्यस्थल का वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

है टीम में काम करने की क्षमता विकसित होती है और भविष्य में रोजगार पाने की संभावनाएं भी मजबूत होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी यह कार्यक्रम विशेष रूप से उपयोगी है। डिजिटल कौशल सीखकर वे ऑनलाइन सेवाओं, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना सकते हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को भी नई गति मिलती है। सरकार का उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक युवा डिजिटल रूप से सशक्त बने और नई तकनीकों का उपयोग करके अपने जीवन और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। यदि आप विद्यार्थी हैं या अपने कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ऐसे प्रशिक्षण और इंटर्नशिप कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें और समय समय पर आवेदन अवश्य करें। और अब आइए एक बार फिर से हम आपको सुनवा रहे हैं रंगदेनी एल्बम का ये टाइटल गीत।

सुजैन डिभेलो, रोबिका और ऋषिकेश कामेरकर के इस गाए गीत के साथ ही आज का ये युवाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत।

भरत सिंह भारती और उनके साथियों के स्वर में अभी आप ये बरसाती भोजपुरी लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ संजय सिंह से सुनी भोजपुरी में समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपराध पर लगाम लगावे और अदालती व्यवस्था के और ही बढ़िया बनावे खातिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर देले बाड़न। वो आज बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में 3 नया आपराधिक कानून के नीक से लागू करे खातिर रखल गए 2 राज्य स्तरीय सम्मेलन के संबोधित करत रहन। मुख्यमंत्री कहलन कि इंसाफ के प्रक्रिया के तेज और असरदार बनावे खातिर 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावल जाई। हमार संवाददाता बतौलन कि यह सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, हाईकोर्ट के औरी जज लोग, राज्य के सब जिला के सीनियर एसपी और एसपी समेत 200 से बेसी प्रतिनिधि हिस्सा लेलन। संसद के मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से शुरू हुई और ई 13 अगस्त तक चली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बतौलन कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मानसून सत्र से जुड़ल सरकार के प्रस्ताव के मंजूरी दे देले बाड़ी। केंद्र सरकार पायरेसी के खबरन के देखत मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के नोटिस जारी कैले बा। सरकार टेलीग्राम के पायरेटेड फिल्म और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे के हुकुम देले बा। सरकारी सूत्रन के मुताबिक प्लेटफॉर्म के 15 दिन के भीतर अपन कार्रवाई रिपोर्ट सौंपे खातिर कहल गइल बा। एह कदम के मकसद भारत के रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, निर्माता और वितरक लोगन के नुकसान से बचावल बा। ओवरलोडेड गाड़ी पर राज्य सरकार झारखंड से बिहार में आवे वाला बालू और गिट्टी लदल अवैध और ओवरलोडेड गाड़ी सबके खिलाफ निगरानी बढ़ा देले बा। राज्य परिवहन आयुक्त सब सीमावर्ती जिला के डीएम लोगन के चिट्ठी भेज के ऐसन गड़ियन के कड़ाई से जांच करे और मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करे के निर्देश देले बाड़न। राज्य सरकार बहुचर्चित टेंडर घोटाला में धराइल भवन निर्माण विभाग के ओह समय के संयुक्त सचिव मुर्मुक्षु कुमार चौधरी के तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देले बा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत ई कार्रवाई कैले बा। मुर्मुक्षु कुमार चौधरी अभी जेल में बाड़न और अगला आदेश तक उनकर निलंबन जारी रही। जहानाबाद जिला के घोसी थाना इलाका के चौथी पिपरा में फल्गु नदी में बालू खने के चक्कर में 2 गुट के बीच भयानक मारपीट भइल और करीब 20 राउंड गोली चलल। एक घटना में गोली लागे से 7 लोग घायल भइल बाड़न। घायल लोगन के नीक इलाज खातिर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजल गइल बा। एसडीपीओ कृति कमल बतौली की मामला के जांच शुरू कर दियल गइल बा और गोली चलावे वाला लोगन के पहचान कइल जा रहल बा। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में बने वाला वाटर पार्क प्रोजेक्ट के काम में रोड़ा अटकावे के आरोप में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों पर लोकल थाना में प्राथमिकी दर्ज कल गई बा। पुलिस के कहनाम बा कि ई लोग काम रुकवा देले रहन और ओहिजा मौजूद कर्मचारी लोगन के साथ मारपीट कैले रहन। भोजपुर जिला के मोहली घाट पर बनल पीपा पुल पर पुलिस के वर्दी के धौंस दिखा के आवे जाए वाला लोगन से अवैध वसूली करे वाला गिरोह के 3 सदस्यन के पुलिस गिरफ्तार कैले बा। पकड़ाइल अपराधी लोगन में एगो होमगार्ड के जवान भी शामिल बा। प्रदेश में मानसून के रफ्तार सुस्त पड़ गई जेकरा कारण बारिश के गतिविधि कम हो गई बा। यही वजह से दिन और रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज कल गई बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा में राज्य के उत्तरी और दक्षिण हिस्सा में कुछ जगह पर हल्का फुल्का पानी बरसल बा। पूर्णिया के ढेंगरा घाट में सबसे बेसी 28.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कल गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान बा कि राज्य के बेसी हिस्सा में हल्का बारिश हो सकेला। ओहिजे अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ोतरी होके के संभावना बा। मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा थाना इलाका में एगो सड़क हादसा में स्कूटी सवार 2 लइकिन के मौत हो गई। मिलल जानकारी के मुताबिक आदि गोपालपुर चौक के पास एगो अनियंत्रित कार स्कूटी में जोरदार टक्कर मार देहलस जेकरा से दोनों लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान दोनों लड़कियन के मौत हो गई बा। मुजफ्फरपुर जिला के सिवाईपट्टी थाना इलाका में आज तड़के अपराधी सब लोग किराना व्यवसायी के गोली

0: मार के हत्या कर देलन। व्यवसायी रोज के नियन डेरा चौक पर बनल मंदिर में पूजा करे गए रहन, वही समय हमलावर लोग ये घटना के अंजाम देलन। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान बाड़ी सुने वाले सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार आ सुमन भाई रहो के नमस्कार।
1: सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई की ओर से प्रणाम है। रनिया बहन रहो के नमस्कार। रनिया बहन
0: जी
1: देखी ये घड़ी जुलाई के महीना चलता है।
0: हाँ हाँ
1: अब मानल जला कि जुलाई में खूब वर्षा होला।
0: आदमी जुलाई से शुरू हो जाना कि भाई अब कूलर उलर का जतना पानी बा कुल निकाल उकाल देवे कि नहीं था जम जाए तो दिक्कत हो जाए।
1: 10 जून के बाद से मानसून आवे लगेला। और जुलाई जोन हो ये घड़ी के जोन महीना हो ये घड़ी तो लामन लागे से अषाढ़ चलता न तो कबो कबो सावन भी प्रवेश कर जात रहे।
0: जी जी
1: आ यही घड़ी देखी धान के रोपनी के सीजन बा। कहे से कि हमने के हैं जोन रोहिणी चढ़ते रोहिणी में बिया डालल जला तो बिया अधिकांश जगह पड़ गई बा। बिया लगभग तैयार बा धान के। रोपनी के भी लोग खेत तैयार करके रखले बा जोत कोड़ के रखले बा लेकिन पानी बिना गड़बड़ा रहल बा।
0: जी जी जी
1: और पानी भी बरसात हुई ऐसा होता ना रनिया बहन कि असामान्य बारिश होता
0: कहीं अपने ज्यादा होके लगता कहीं कम होता
1: है। कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं खे सामान्य से 55% वर्षा कम भइल बा अभी भी। और अगर खाली रोहतास जिला के बात कर जाओ तो सासाराम में वर्षा अधिक बा। नौहट्टा में कम बा। सासाराम में जहाँ 110 mm बारिश भइल पूरा महीना में
0: जी
1: नौहट्टा में 1.4 mm वर्षा भइल। राजपुर में कम बा। यह तरह से जोन असामान्य बारिश बा ना ये लागता कि हमनी के जोन कैले बानी जा प्रकृति के साथ जो न्याय कैले बानी जा ओकर प्रकृति बदला लेवे शुरू कर दे।
0: हाँ भाई अब हमनी के प्रकृति के साथे ही छेड़छाड़ कैल जाई भाई दिक्कत तो हमनी के साथे साथे नहीं आवे वाला जोन पीढ़ी बने उनको दिक्कत हो जाये।
1: देखी नौहट्टा या रोहतास के जोन क्षेत्र हो मानल जला कि कैमूर पहाड़ी के हरा भरा जंगल वाला क्षेत्र
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सबसे अधिक वर्षा ओजा होके के चाहिए
0: लेकिन ओजा कम
1: लेकिन जंगल सुना बा पेड़ पौधा के कमी बा। जंगली जीव पानी के तलाश में आ जाता इन बधार तक सासाराम करघर कोचस तक पहुँच जाता।
0: जी जी
1: तो ये कुल जोन बा जोन हमनी के लकड़ी के जंगलन के साफ कर देनी जा कंक्रीट के जंगल शहरन में लगा देनी जा तो एकर असर आ रहल बा। और एकरा के जोन मौसम के बचावे खातिर प्रकृति के साथ हमनी के लौटे के पड़ी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिना प्रकृति के साथे रहले पर हमनी के कौनो तरह से गुजारे नहीं है माने जीवल मुश्किल बाटे। हमनी के साथे साथे नहीं कौनो पशु पक्षी प्राणी बना चाहे फसल तक नहीं हो सकेला
1: बिना देखी बारिश के तो जीवन के कल्पना ना कर जा सके। कहे से कि बारिशें जोन बा जोन सालों भर हमनी के पानी और अन्न जोन देला वही वर्षा के पानी बा।
0: बिल्कुल सही बात।
1: और अगर ये वर्षा रही

0: तबे हमनी के जो नहरी क्षेत्र बा ओहू में नहर में पर्याप्त पानी आई, न तो पता चली कि ऊपरे के नहर लोग बांध देले बा, नीचे के जे गांव के लोग बा जे किसान भाई लोग बाणन परेशान बाणन दौड़त अड़न, यही में मार पीट झगड़ा झंझट सब होके लगता पानी खातिर
1: ना। देखी जले जीवन हुए आ जल जितना भी बरखा होके अभी के देख करके तो हमनी के बरखा के पानी जवन भी बा ओके बचावे के चाहिए, कोशिश करे के चाहिए कि जो भी बाटे भी ओकरा के बचाई और जितना हो सके पेड़ पौधा भी लगाई भाई। तो देखी सुमन भाई हमनी के आगे और बातचीत तो करबे करल जाई, पहले जान लेल जाओ कि आज के कार्यक्रम में हमनी के कोना कोना विषय पर बातचीत कर जाए। तो देखी आज कार्यक्रम में गांव किसान बाड़ी कार्यक्रम में हमनी के हर रोज के तरह आज हमनी के कुछ न कुछ सुनबे कइल जाई, विशेष करके हमनी के सुनल जाई। सबसे पहले तो हमनी के हर रोज के तरह आज हमनी के कृषि संबंधी समाचार सुनल जाई, आ ओकरा बाद हमनी के आज की बातें के तहत भेंट वार्ता सुनल जाई, जेकर विषय रही अति सघन बागवानी के फायदे। भेंट वार्ताकार रह विजय बहादुर सिंह आ यहाँ से भेंट करब डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी। आगे हमनी के नया दौर नई बातें के तहत सुनल जी वन महोत्सव क्यों है जरूरी, यह विषय पर कहे कि अभी वन महोत्सव सप्ताह चल रहा बाटे 1 तारीख से लेके 7 जुलाई तक, तो यह पर हमनी के चर्चा कइल जाई और जानकारी भी लेहल जाई। आगे नसीहत में हमनी के धान के बिचड़ों की करे देखभाल, यह विषय पर भी हमनी के बातचीत कइल जाई। आगे हमनी के बाजार भाव के साथे साथे मौसम आ उनके पूर्वानुमान पर भी हमनी के एक नज़र डालल जाई। एक साथ ही हमने के अपने किसानवाड़ी का जौनबा कार्यक्रम समापन की ओर ले जाए जाई। ये रहल आज के हमने के किसानवाड़ी कार्यक्रम के संक्षिप्त रूपरेखा।
0: तो देखें अब शुरू कर जाओ आज के कृषि समाचार से।
1: जी जी जी
0: कार्यक्रम के शुरुआत कर जाओ। रनिया बहिन देखें सरकार जौनबा उन हर पंचायत में एगो अत्याधुनिक हाट बाजार बनावल जा रहा बा। आई हाट बाजार बनावे खातिर जोन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री बनी श्रवण कुमार, तो वहाँ के अपन हरी झंडी भी दे देनी और 5 साल के अंदर पूरा राज्य के जितना पंचायत बा ओकरा में ये अत्याधुनिक हाट बाजार बन जाए। और जोन हाट बाजार बनी तो उन पंचायत के जोन पुरान सरकारी भवन बा ओकरे में बनावल जाए जो अनुपयोगी बा और ओकरा के विकसित कर लिए, ओकरा के जीर्णोद्धार करके ओकरा में शुरू कर लिए। फायदा ये हुई रनिया बहिन कि किसान भाई लोग अपन जो कृषि उत्पाद बा ओकरा के बेचियन सीधे अपन सामग्री बेच सकेलन और इमें बिचौलिया के भूमिका खत्म हो।
1: अच्छा तब तो सबसे बढ़िया
0: सबसे बढ़िया बा, उनका के बाजार उपलब्ध हो जाए। हाटन में बाहर के भी व्यापारी अहन सीधा माल खरीद के ले जिहन और जहाँ के जोन विशेषता बा जोन उत्पाद के विशेषता बा, जैसे हमनी के देखें आदमी कहला कि अगर चेनारी के नौहट्टा तरफ के अगर रहर मंगावल जाए तो दाल बड़ा बढ़िया गलेला है, मूंग बड़ा अच्छा होला होने के, तो हर मिट्टी के अपन कुछ ना कुछ विशेषता बा और ऊर्जा के मांग भी बा, तो ये सब ऊर्जा तक व्यापारी पहुँची हन और सामग्री खरीदी हन। एकरा के जो हाट बाजार रही ओकरा के अनिवार्य रूप से डिजिटल मार्केट से भी जोड़ल जाए, जौना से कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बाजार बा हाट बाजार बा तो बाहर के लोग भी देख पाई और वही जा से भी ऑर्डर करके मंगा सकेला, तो ये बहुत बड़ उपलब्धि हुई। एकरा अनुसार एकरा जो अलावा महिला लोग के कौशल विकास और युवा में प्लम्बिंग जैसा ट्रेड के भी ट्रेनिंग देके ओकरा के आगे बढ़ावल जाए। एकरा अलावा देखिए पर्यटन केंद्र पर भी बाजार खोलल जाए, हमने के इंद्रपुरी में पर्यटन केंद्र खुला था, वही जा भोजपुरी हाट भी बन रहा बा, वही जा जीविका दीदी और किसान भाई लोग के उत्पाद सीधे पहुँची आ जौन पर्यटक यहाँ देश विदेश के वो खरीदार रही। एकरा से बिचौलिया के भूमिका खत्म हुई और किसान भाई लोग के उत्पादक के जो उचित मूल्य बा तो मिल जाए और एकरा से आमदनी भी बढ़ी बल्कि वो आत्मनिर्भर भी बनी।
1: जी जी जी मने परेशानी खत्म हो गई बेचे के और बिचौलिया लोग से भी परेशानी खत्म हो गई, खरीदे के बेचे के पैसे बेचे के बाद हाँ सब चीज उपलब्ध हो गई।
0: एक और छोटा सा बा खबर कि हमने के जितना पुराना दस्तावेज बा जमीनन के
1: जी
0: जो ना के देखले हो कब कभी सर्वे चलत रहे थे गांव गांव किसान भाई लोग हमनी के परेशान रहे, पता चले कि नयका सर्वे ना पुरनका सर्वे में हुई, तो सरकार 100 साल पुरान जितना निबंधन दस्तावेज बा ओकरा की स्कैनिंग पूरा करा ले बा।
1: अच्छा
0: और वो दिसंबर माह तक जितना काम बा पूरा कर लिया जाए या मार्च से ओकरा के ऑनलाइन होके देखल जा सकेला।
1: देखिए इहो समस्या का समाधान हमनी के सरकार जोन बा कर रहल बाटे।
0: एकरा में 1970

0: के दस्तावेज के भी स्कैनिंग हो गई बा 1927 तक के। एकरा से का हुई कि ये जो दस्तावेज रही ओकरा से जो 118 साल पुराना दस्तावेज के डिजिटल होके से वो सुरक्षित रही, रिकॉर्ड चोरी होके के खतरा खत्म हो जाए, फटे या जले के समस्या खत्म हो जाए, पुस्तैनी जमीन के केवाला जोन बा ओकरा के निकाले में परेशानी ना होगी, दादा परदादा के समय के कागजात जोन बा तो मिल जाए,
1: मिलल मुश्किल रहे वो मिल जाए,
0: ओकरा से विवाद जितना चल रहल बा ओकरा के सुलझावे में मदद मिली। आ दस्तावेज निकाले के नाम पर जोन निबंधन कार्यालय के जोन चक्कर लगावल जाला वो पहले चक्कर लगावे के काम
1: खत्म हो जाए, यानी कि हर तरह से सुविधा हमने के हो जाए। आज का खबर बहुत ही सुंदर रहल, बहुत ही बढ़िया रहल, हर तरह से हमने के जवन भी आवश्यकता रहे वो पूरा करे खातिर सरकार एकदम तत्पर हो गेल बाटे आ साथे साथे प्रशासन भी तत्पर हो गेल बाटे। तो यह खबर खातिर के सुमन भाई रउआ के बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने के चलल जाओ अपने भेंट वार्ता की जी, विषय बाटे अति सघन बागवानी के फायदे। भेंट वार्ताकार बनी विजय बहादुर सिंह, यहाँ से भेंट के लिए बनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी, सुनल
0: जाओ। सुनल जाओ यहाँ से भेंट वार्ता।
2: श्रोता सब बरसात में पौधन के लगावल जाला, आ इस समय नया जोन तकनीक आइल है पौधन के लगावे के, पेड़ पौधा लगावे के, ओकरा में अति सघन बागवानी
3: जी
2: एक नया तकनीक बा जोन कि इजराइल से शुरू भई रहे
3: जी,
2: हमरा देश में भी आइल बा कि कम जगह में अच्छा उत्पादन जोना से लेहल जा सके
3: जी।
2: पहले आम का पेड़ रहल हँ से बड़ा बड़ा पेड़ हुई हँ सन, अमरूद बा या एकरा अलावे अन्य भी जोन कटहल बा
3: जी,
2: जामुन बा, तो बड़ा बड़ा पेड़ हुई हँ सन, वो अनुपात में फलन नहीं हो पाई। बहुत बड़ा पेड़ बा, पुराना पेड़ बा, मुश्किल से 3 क्विंटल 2 क्विंटल आम का फलन मिलेला। उकरा चलते हमने का अति सघन बागवानी के तरफ आवे के पड़ी। अति सघन बागवानी हो भी रहल बा देश भर में। हमने के क्षेत्र में किसान बने विजय बहादुर सिंह जी जौन अति सघन बागवानी करीला, यहाँ का सबया राजपुर रोहतास का रहे वाला हैं। आज यहाँ से जानल जाओ कि अति सघन बागवानी से का लाभ बा आ कैसे करे के चाही। विजय बहादुर सिंह जी आपका हमारा स्टूडियो में स्वागत बा। ये बताई कि जोन अति सघन बागवानी कैली आप पहले पारंपरिक रूप से खेती करत रही, पौधा लगावत रही पेड़न के, दोनों में फर्क का महसूस की?
3: किसान भाई अभी जोन बातन सघन बागवानी अति सघन बागवानी आ एक पारंपरिक के जो विधि से जौन हमनी के पूर्वज लगावत रहन तो ओकर जौन दूरी रहत रहे 10 से 12 मीटर रहत रहे। सघन बागवानी में दूरी 5 मीटर बाई 5 मीटर हो गई। आ अति सघन बागवानी, सघन बागवानी के मतलब कि हाई डेंसिटी, अति सघन बागवानी मतलब कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी, वो और दूरी कम हो गई। जबकि आम्रपाली के पौधा जौन बड़ हुए, मल्लिका के पौधा बड़ हुए आम के, तो अति सघन बागवानी में 1 एकड़ में 1600 पौधा होला। 1 एकड़ में 1600 पौधा अति सघन बागवानी, लेकिन ओकरा में कैनोपी मैनेजमेंट कइल जाला। अति सघन बागवानी में किसान के बहुत सतर्क रहे के पड़ला। सघन बागवानी में तो ज़्यादा सतर्क नहीं के रहे के, ऐसे ओकर दूरी 5-5 मीटर हो गई। तो 5 मीटर के बात भइल तो जहाँ हम 1 हेक्टर में 100 पौधा लगावत रही, ओहिजा जौन बा तौन हम सघन बागवानी में हाई डेंसिटी में 5 मीटर के दूरी पर जब लगाओ तनी 5 मीटर लाइन से लाइन आ 5 मीटर पौधा से पौधा, तो ओह में हमार 4 गुना बढ़ गए, यानी 400 एक हेक्टर में हो गई। आ उहे जब हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी लगाओ तनी अति सघन बागवानी तो उसमें हो गई 2.5 मीटर, तो उसमें 1600 पौधा हो गई। 1600 पौधा 1 हेक्टर में हो गई। तो किसान भाई ओकरा में बहुत सचेत रहे के बा, सचेत ऐसे रहे के बा कि किसान के उतने हाई डेंसिटी हाई पावर में रहे के बा कि हमार जब फल के तुड़ाई हो जाए तो हम ओकरा के 25% बायोमास बा तवन जैसे हम बाल अपन काटत तनी वैसे ओकरा के निकाल देवे के बा, सूर्य के प्रकाश में लागे के चाही, एक पौधा से दूसरा पौधा के सटे के ना चाही, जब सट जाई तो फिर जौन बा तौन अगला साल फली ना
2: जी। विजय बहादुर जी, लेकिन ई कहल जाला
3: जी
2: कि जैसे कहतली है कि 1 हेक्टेयर में हमनी के पहले 100 गो लगावत रही, सघन बागवानी में 400 हो गई, अति सघन बागवानी में 1600 हो गई, अब एक

0: चीज बताई कि पौधा तो हमनी के ज्यादा लगावे के पड़ल तो खर्च ज्यादा पड़ल ओकर देख रेख ज्यादा हो गई का फलन जोन बाटे जैसन कहल जाला कि फलन ओकरा में ज्यादा होला उत्पादन ज्यादा होला का ये सही बात बा।
1: अब देखी अब अगर 100 पौधा से हम लेता नहीं बीजू पौधा लगावतानी या कलमी पौधा लगावतानी अगर 100 गो पौधा हो तो ओकरा तैयार होखे में भी हमरा पूरा समय लागी। लेकिन जब सघन बागवानी लगावतानी 400 पौधा तो उ पौधा जौन बढ़ुए तौन हम नीचे से ही तुड़ाई कर लेब नीचे से तुड़ाई कर लेब अति सघन बागवानी में भी हम नीचे से तुड़ाई कर लेब आ कम समय में ज्यादा उत्पादन होई हमार जौन जौन ज्यादा उत्पादन होई। कारण का बढ़ुए कि हमार कोई भी क्षेत्र खाली नहीं खे रहत आ उसमें जोन पारंपरिक रूप से जोन लागत रहे उसमें पूरा जमीन परती रहत रहे
0: बीच के जगह खाली रहत रहे
1: जी आ कुछ ना नीचे धा से कुछ होत ना रहे आ ये हमें पूरा जमीन के माने सदुपयोग हो रहल बा तो सदुपयोग हो रहल बा तो उ जोन बा तवन उसमें फलन ज्यादा आई रह गइल की बस थोड़ा सचेत रहे के बा कि ओकरा में कैनोपी मैनेजमेंट आदि छत्र प्रबंधन काट छाँट करे के बढ़ुए ट्रेनिंग प्रूनिंग हमेशा करे के बा हमेशा करे के मतलब बढ़ुए कि मतलब कि बरसात जैसे ही आई फल के तुड़ाई हो जाए तो ओकरा के 25% ओकर जौन बा तौन काट छाँट कर देवे के बा जी काट छाँट करके हटा के जला देवे के बा ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा जौन बा तवन ओकरा के अथी ना होई हन
0: जी जी। अब अति सघन बागवानी करे के कैसे होई हमनी के कैसे लगावे के
1: करे के बढ़ुए एक अति सघन बागवानी में हमनी के खेत के जैसे मान ली 1 एकड़ खेत बढ़ुए तो 1 एकड़ खेत के हम जोताई कर देनी जो भी हो 1 एकड़ खेत के जोताई कर देनी कुछ दिन सूखे खाती ओकरा के मिट्टी के छोड़ देनी एकरा बाद में हम नापी करके जैसे अति सघन बागवानी में 2.5 मीटर के दूरी पर जौन हम बातवन 3 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा हम गड्ढा खान के 15 दिन ओकरा के मिट्टी निकाल के धूप लागे खाती छोड़ देनी एकरा बाद में 15 दिन के बाद में हम जौन बा तवन ओकरा में बर्मी कंपोस्ट होखे चाहे पुराना कंपोस्ट होखे ओकरा के कम से कम 15 किलो 20 किलो या 50 किलो कंपोस्ट डालल जी 15-20 किलो अगर बर्मी कंपोस्ट डालतन जा तो 50 किलो कंपोस्ट डाले के पड़ी दोनों में कौनों में मात्रा इतना कम बेसी होखे के चाहिए
0: जी।
1: दूसरा चीज बा कि एक चुटकी थाइमेट हरेक थाला में डाले के पड़ी जी ताकि कि खेत में जौन दीमक होलन या व्हाइट ग्रब जौन कहालन मंगरा ई सब चीज जौन बढ़ुए तौन ई कीड़ा मकोड़ा हमें ना लगी हन
0: जी।
1: आ कुछ जमीन जैसे कमजोर बा तो मिट्टी जांच के आधार पर ओकरा में हम कुछ मिट्टी खाद भी डाल सकी ना मान ली कि 100 ग्राम के हिसाब से डाल के फिर वो गड्ढा के भर देब आ भर देब एकरा बाद बरसात के इंतजार करब बरसात में बैठ जाए बैठला के बाद में हम पौधा के चुनाव करब आ पौधा हम कहीं बढ़िया संस्थान से ले आई जहाँ जैसे मान ली कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब और बा या कृषि विज्ञान केंद्र में भी पौधा आयल बाड़ी सन तो ऐसन ऐसन जगह से हम पौधा ले आई आ ले आके आ ओकरा के ओमे या तो पुआल लगाओ रहला या प्लास्टिक के लगाओ रहला ओकरा के फिर उतने हम माने लगभग 1 फीट गड्ढा करके या वो गड्ढा में जौन बात उन प्लास्टिक निकाल के आ थोड़ा पानी डाल के या फिर जौन बात बैठा दे बैठा के या खड़ा होके या ओकरा के मिट्टी से भर दे पूरा दबा के या गोड़ से दबा दे आ एकरा बाद में पानी दे दे जी।
0: इस तरह हमनी के रोपण कर लेबे
1: जी सब चीज बात ना पटवन करे खाती सिंचाई करे खाती हमरा ड्रिप सिस्टम जौन बात एकरा में लगाना जरूरी बा ड्रिप सिस्टम या माइक्रो लगाई जी फ्लडिंग सिस्टम से उतना पानी ना एथी हो पाई अब ज्यादा घास ओस जामे के एथी रहला लेकिन ड्रिप सिंचाई से बहुत अच्छा होला।
0: अच्छा घास ओस का बात करते हैं तो घास के हमनी के समय समय पर
1: समय समय पर चाहे अभी रवा बहुत सस्ता है घड़ी पावर बीडर चलल बा 34,000-40,000 में मिल रहल बा पेट्रोल इंजन से चले वाला ओकरा में रोटावेटर बा ओकरा से जोताई कर दही साल में 2 बार जोताई कर दही कीड़ा मकोड़ा भी वातावरण बेथी से सूख जइह ना घास भी एको ना जामे
0: जी जी
1: जी।
0: अच्छा सिंचाई हो गई
1: जी
0: जोन कलिह कैनोपी मैनेजमेंट कटाई छटाई
1: जी
0: हमनी के कितना ऊंचा तक पौधा रखे के चाहिए
1: हम जैसे कि शुरू में 1 मीटर के बाद में ओकरा के ऊपर वाला काट दिया
0: मेन जोन तना
1: मेन तना बा ओकरा के काट दिया तो साइड से ब्रांच निकली शाखा निकली तो 2-3 गो शाखा निकली तो हर एक साइड में 1 गो शाखा छोड़ल जाय 1 गो शाखा में से फिर ऊपर बढ़ी जब ऊपर बढ़ी तो फिर ओमे 2-3 गो छोड़ल जाय बाकी फिर ओकरा के काटल जी तो फिर ओहिजा से अथी होई तो ऊपर से जोन बीच वाला कटले बनी ओहिजा से धूप लागी तो धूप लागी तो हमर पौधा बहुत अच्छा विकास

0: भी करी आ एथी भी रही माने
1: स्वस्थ धूप जड़ तक
0: धूप लग जाए के चाही धूप जाए के चाही
1: जी
0: जी या साल में दो बार कम से कम चूना क्लोरोपाइरीफास आ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के मिला के आ दो बार ओकरा के कम से कम एक मीटर तक पोताई करे के चाही ताकि कि जैसे माल नहीं कि छाल बढ़ुए ओकर तमन फाटे मत आ कोई कीड़ा मकोड़ा लगी हन ना
1: जी
0: जी
1: अच्छा जैसे जौन अति सघन बागवानी बा तो एकरा में जैसे कहीं हम मल्लिका बा आम्रपाली बा या और जौन बौनी प्रभेद बनी सन
0: हिमसागर बा
1: हिमसागर बा या अन्य जौन बनी सन या एकरा अलावे जैसे जामुने का करे के बा हमने के अमरूद का करे के बा
0: कटहल के
1: करे के बा तो ये सब जौन बौनी प्रजाति बनी से उहे हमने के लगावे
0: हां उहे लगावे के होई आ सब उहमे सघन बागवानी में जाई अति सघन बागवानी में उ सब ना हो सके जी
1: अति सघन बागवानी
0: बागवानी में आमे अमरूद हो सकला
1: अच्छा
0: अति सघन बागवानी में आमे अमरूद हो सकला बाकी जौन बड़ुए तन माने उतना एथी ना करी
1: अच्छा
0: जी ओकर विकास होखे के चाहि तभी फल फलन आई
1: जी लेकिन जैसे नींबू बाटे अनार बा तो ई कुल
0: अति सघन बागवानी में ई माने छोटा छोटा पौधा होला ऐसे आ सकला अति सघन बागवानी में लेकिन कुछ दिन के बाद में फिर ब्रांच आई तो अगर नहीं ही काटत तो समझ ली कि हानि ही करी
1: तो काटे के तो पड़बे करी अति सघन बागवानी में
0: जी
1: जी तो इस तरह से अगर हमने अति सघन बागवानी करतन तो अच्छा उत्पादन हो सके
0: बहुत अच्छा उत्पादन हुई ज्यादा हुई
1: आ सबसे बड़ी समस्या बा होला हमने का बड़ा पेड़ हो गई आन्ही आई पूरा फरल बा अब बदबदा के पूरा आम गिर जाला ई सब अति सघन बागवानी में नहीं होला ऐसे कि 7-8 फीट तक ऊंचाई होला
0: पूरा
1: हाथ से पकड़ करके ओकरा के तोड़े के
0: बा किनारा किनारा जैसे कि बीजू आम बा बीजू अमरूद बा एती बा ई जामुन बा तो कुछ ऐसन ऐसन पौधा किनारा किनारा लगा दे तो हवा के रोक जौन पश्चिमी छोर आ उत्तरी छोर पर लगावल जला तो ओहमें हवा के झोंका कामना करे एत सघन बागवानी में अति सघन बागवानी में बहुत फायदा बा कि किनारा किनारा को वायुरोधक वृक्ष जरूर लगावे के चाहिए
1: जी जी
0: जी
1: तो इस तरह से हमने का अति सघन बागवानी करके अच्छा उत्पादन कर सकेंगे
0: जी
1: तो विजय बहादुर सिंह जी आप पहली इतना नीमन जानकारी देने एक खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद
2: बड़ा बढ़िया हमने के सुमन भाई सुन ली जब भेंट वार्ता जौन की विषय रहा अति सघन बागवानी के का फायदा बाटे
3: बड़ा बढ़िया जानकारी देनी है विजय बहादुर सिंह जी यहाँ के बतौनी है कि कैसे एकरा के कइल जाला और यहाँ से एक एक बात फरिया फरिया के डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी पूछनी है
2: जी जी
3: आज इतना बढ़िया जानकारी मिलल हमने के कि एकरा से किसान भाई लोग भी लाभान्वित हो तो दोनों लोग के बहुत बहुत धन्यवाद
2: बहुत बहुत धन्यवाद अब हमने के आगे बढ़े से पहले सुन लेल जाओ संदेश
3: हाँ यहाँ कुछ संदेश सुनल जाओ

ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के

0: सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पर कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: आए सुमन भाई, हमने के अब अपने अगले कार्यक्रम की ओर चलल जाओ। देखी अभी हमने के वन महोत्सव जोन सप्ताह चल रहा बाटे, एक तारीख से लेके सात तारीख तक चली। आ देखा तने कि जब बरसात का मौसम शुरू होखेला सुमन भाई, तो धरती जैसे लागेला कि नया जिंदगी उनकर बने शुरू हो गई। तो चारों तरफ हरियाली फैले लागेला। आ इहे समय बाटे कि हमने के पेड़ पौधा लगावे का बड़ी अच्छा समय बाटे। आ यही के देख करके हमने के जोन बाकी हरेक साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरा देश मना रहल बाटे वन महोत्सव।
1: रनिया बहन देखें, जब हमने के कोनो उत्सव मनावे नहीं जाए, महोत्सव है जोन महा उत्सव, और जब उत्सव मनावे नहीं जाए तो हमें उत्साह उमंग उल्लास सब भर रहे।
0: जी जी जी।
1: और वन महोत्सव भी बहुत बड़ा उत्सव बा जोन की हमने के पेड़ के प्रति जागरूकता पैदा करता।
0: जी बिल्कुल।
1: वन के कटाई रोके खातिर भी, पारिस्थितिकी के संतुलन बनावे खातिर भी, जैसे हमने के चर्चा में कहनी है जाए कि एक के जिला में कहीं 100 मिलीमीटर वर्षा होता था, कहीं 1 मिलीमीटर वर्षा होता
0: है। ये
1: पारिस्थितिकी असंतुलन है।
0: हाँ।
1: ये काहे जरूरी बा एकरा में कि देखी बढ़त प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के जो दौर चल रहा बा रनिया,
0: जी जी जी,
1: एकरा में अत्यधिक वन कटाई के से वन के जोन दायरा बा वो घट गई बा। तो वन महोत्सव जोन मनेला वो दायरा के पाटे खातिर मनेला, हरित क्षेत्र बढ़ावे खातिर मनेला।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात।
1: और वन जोन है तो हमनी के पर्यावरण जोन है तो फेफड़ा है एक तरह से कही, वो हमनी के शरीर खातिर बहुत जरूरी बा जोन पेड़ पौधा बा,
0: प्राण वायु जेकरा के हमने
1: प्राण वायु कहल जाला, उनकी कार्बन डाइऑक्साइड के सोख के हमनी के ऑक्सीजन ताजा देला, ये ग्लोबल वार्मिंग के भी प्रभाव के कम करेला।
0: आ एकरे अलावा देखी कि दिनों दिन माने गर्मी तो एकदम चरम सीमा पर बढ़त चल जात बटे। माने पहले ही सन देखत रही जा सुमन भाई कि हमने के माने अपने खेत में अगल बगल पेड़ पौधा लगावल जात रहे, वो जगह आदमी काम कैला के बाद बैठ करके तनी छहिरा लेत रहा, चाहे आम फल फलहरी भी मिलत रहे हमने के। अब देखी कि न छाँव मिलत न कुछ मिलत बटे।
1: आज के मौसम के मिजाज पर भी चर्चा कर जा। आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस।

0: अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 60 डिग्री 60% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 30% रहल है। हवा के गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चलल है। मौसम विभाग के जौन पूर्वानुमान बा ये दौरान जिला में एक या दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले के संभावना बा, हल्का से मध्यम वर्षा होके के भी अनुमान बा। जिला में एक दो स्थान पर भारी वर्षा भी हो सकेला। अधिकतम तापमान वह 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड बनल रही।
1: जी जी, अब यही के साथ हमने के कार्यक्रम का समय अब खत्म होत बाटे। यह कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही हैं संतोष कुमार। अब हमने के विदा लेवे के सुमन भाई, तो चलत चलत सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार। आ सुमन भाई रघुओं के नमस्कार।
0: सब श्रोता भाई बहन के प्रणाम। रनिया बहन रघुओं के नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

निरहुआ मेल फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहन राठौर की आवाज़ में। प्यारे लाल यादव के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राजेश रजनीश ने। सांझ गीत कार्यक्रम में श्रोता दोस्तों, आइए हम आपको अब सुनवा रहे हैं निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म का एक गीत। उदित नारायण की आवाज़ है, श्याम देहाती हैं गीतकार और संगीतकार हैं राजेश रजनीश।

0: حلوى.
1: निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में, और अब आइए सुनते हैं दरोगा बाबू आई लव यू फिल्म का ये गीत।

0: विदाई फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। उदित नारायण और उदित नारायण की आवाज़ में विनय बिहारी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी धनंजय मिश्रा ने। और अब अगला गीत हम आप तक पहुंचाएं, इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देहियों के बुलंदियन के पाख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।

रिजा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और पामेला जैन की आवाज़ों में। अरविंद तिवारी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी अमन श्लोक ने। अब आइए हम आपको सुनवाएं कब आई हैं दुल्हा हमार फिल्म का एक गीत। मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें हैं। वीरेंद्र पांडे हैं गीतकार और संगीतकार हैं सुरेंद्र कोहली।

कब आई हैं दुल्हा हमार फिल्म के इस गाने के साथ ही भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास में आप और हम बातचीत करते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर, और इसके अलावा कुछ फिल्मी नगमे भी हम आपको सुनवाते हैं। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर।

तो सबसे पहले जानते हैं रोहतास जिले की सुरक्षा के बारे में, प्रशासन कैसे मुस्तैद है, तैयार है और सतर्क भी। दोस्तों, सुरक्षा की कवायद शुरू हो गई है। पूरे जिला क्षेत्र को 4 जोन में विभाजित करते हुए सुपर पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई। डीएसपी व इंस्पेक्टर रैंक के अफसर करेंगे सुपर पेट्रोलिंग। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भभुआ जिले में रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अफसर सुपर पेट्रोलिंग करेंगे। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के निर्देश पर पूरे जिले को 4 जोन में बांटकर यह व्यवस्था लागू की गई है। डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी अपने नियमित काम के अलावा तय दिन पर रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक अपने जोन के थाना क्षेत्रों में घूमते रहेंगे। वे थानों में रात की पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण के लिए हो रही कार्रवाई की जांच करेंगे। एसपी के अनुसार अपराध नियंत्रण, प्रभावी गश्ती, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए जिले के थाना क्षेत्रों को 4 सुपर पेट्रोलिंग जोन में चिन्हित किया गया है। साथ ही यातायात सही रहे, सासाराम शहर में जाम की हालात से लोगों को निजात मिले, इसके लिए भी रोहतास प्रशासन अहम कदम उठाए हैं और रूट नए बनाए गए हैं, जिसको लेकर नागरिकों में संतोष है।

इंटर ऑन स्पॉट नामांकन की तिथि बढ़ाई गई है। अब 9 जुलाई तक नामांकन लिया जाएगा। पहले 1 जुलाई तक का समय दिया गया था। जिन्होंने इंटर में नामांकन को लेकर पहले OFSS के माध्यम से आवेदन नहीं दिया था, उनको भी स्पॉट नामांकन में मौका दिया गया है। बिहार बोर्ड ने कहा है कि छात्र हित में यह निर्णय लिया गया है। 10 जुलाई तक सभी प्लस टू स्कूल और कॉलेज स्पॉट नामांकन के छात्र छात्राओं की सूची OFSS पोर्टल पर अपडेट करेंगे।

बीमा महाभियान के तहत एक दिन में 1149 नई पॉलिसियों के साथ रचा नया कीर्तिमान। डाक प्रमंडल को बीमा प्रीमियम में मिला राज्य में दूसरा स्थान। किए गए हैं सम्मानित। ये बात सासाराम की है। और अब आइए लिए चलते हैं हम आपको गीत और संगीत की दुनिया में।

देश प्रेमी फिल्म के इस गाने के साथ ही सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:25 हुआ चाहते हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनिए प्रादेशिक समाचार एक अंतराल के बाद।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा की। अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर दिया बल। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13

0: अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने एथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताया, कहा यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू कर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्याय व्यवस्था को और तेज तथा प्रभावी बनाने के लिए 100 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने ये जानकारी दी। इससे पहले बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने समयबद्ध तरीके से मामलों के निष्पादन की व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया था।
1: मैं पिछले 2 साल से लगातार आग्रह कर रहा हूं कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना किया जाए और जरूरत पड़े तो अभी आप किसी को चार्ज दें। जिले में केसेस बहुत लंबे चल रहे हैं और पहले फिक्स था कि 14-15 केसेस को आपको सुनवाई करके पूरा करना है, वो टाइम फ्रेम नहीं हो पा रहा है। इसकी व्यवस्था हमको जो भी सरकार के स्तर पर करना है हमको निर्देशित कीजिए। हमारी सरकार आपको एकदम पूरी तरह आश्वस्त करती है कि रूल ऑफ लॉ के लिए जितनी भी राशि लगाना पड़ेगा हम लोग हर हालत में लगाने का काम।
0: मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण और न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग पर बल दिया।
1: अब AI का उपयोग हम कर सकते हैं और AI उपयोग करने से सब पता चल जाएगा कि कौन थाना में आया था, कौन कहीं क्राइम यदि CCTV कैमरा में हो रहा है। यदि हम AI को यूज करते हैं तो आपको रेड फ्लैगिंग, ग्रीन फ्लैगिंग या जिस भी तरह के आप अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे उससे आप सीधे कनेक्ट हो जाएंगे कि किस इलाके में हमको अधिक ध्यान देने की जरूरत है और कहां गड़बड़ी हो रही है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ट और बिहार जुडिशियल एकेडमी ने संयुक्त रूप से किया है। सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, राज्य के सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र संबंधी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने एथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताते हुए कहा कि यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था।
2: It is supported by scientific evidence.
3: यह वैज्ञानिक प्रमाणों, ऑटोमोटिव निर्माताओं द्वारा व्यापक परीक्षण और उनका समर्थन करने वाली एजेंसियों यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI और SIAM का समर्थन प्राप्त है और यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ही है जिनका पालन जीवाश्म ईंधन को हरित बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है।
2: The fossil fuels to lower the carbon emissions.
0: केंद्र सरकार ने पायरेसी की खबरों को देखते हुए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों के हितों की रक्षा करना है। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13

0: प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक विकास को गति दी जा रही है और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। आज रोहतास के विक्रमगंज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा राज्य में उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने निर्णय लिया है कि यदि 30 दिन में जो बाकी सब डिपार्टमेंट है, यदि वो उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को लाइसेंस देने का काम नहीं करते तो 31वें दिन उद्योग विभाग सेल्फ अप्रूव सभी लाइसेंसेस को करने का काम करेगा। और अब जो ये 30 दिन का सिंगल विंडो सिस्टम है, ये कोई कागजी या काल्पनिक बात नहीं बल्कि बिहार की सच्चाई है।
0: राज्य सरकार ने झारखंड से बिहार में प्रवेश करने वाले अवैध और ओवरलोडेड गिट्टी लदे वाहनों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों की सघन जांच करने और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में गिरफ्तार भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव मुमुक्षु कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत यह कार्रवाई की है। मुमुक्षु कुमार चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण कर इतिहास रच दिया है। 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाले वैभव भारत की सीनियर पुरुष टीम के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 1989 में 16 वर्ष की आयु में पदार्पण करने वाले सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इधर भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा T20 क्रिकेट मैच मैनचेस्टर में जारी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर और 2 गेंदों पर 84 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 2 छक्के लगाए। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके

0: के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। जहानाबाद जिले के खोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत चैती पिपरा स्थित फल्गु नदी में बालू खनन को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 6 लोग घायल हो गए। एसडीपीओ कृति कमल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई है।
1: चैती पिपरा गांव में दो पक्षों के बीच बालू उठाव को लेकर के विवाद हुआ और उसी में गोली चली है। अभी की सूचना के अनुसार 6 लोग घायल हैं। जो भी लोग इसके दोषी होंगे उनके विरुद्ध जो भी उचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
0: पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोप

0: बालू उठाव को लेकर के विवाद हुआ और उसी में गोली चली है। अभी की सूचना के अनुसार 6 लोग घायल हैं। जो भी लोग इसके दोषी होंगे उनके विरुद्ध जो भी उचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
1: पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोप में स्थानीय थाने में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद तुहन ने नेपाल की नागरिकता रखने वाली 10 महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया के तहत शपथ दिलाई। इन सभी महिलाओं का विवाह अररिया जिले में हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 युवतियों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदि गोपालपुर चौक के पास एक अनियंत्रित कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी जिससे दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के पूरब टोला में करंट लगने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बोचाही के पास पिछले गुरुवार को हुई लूट के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट की रकम और हथियार समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। मधुबनी जिले के जयनगर में पेट्रोल पंप पर पिस्तौल दिखाकर लूट की कोशिश कर रहे 2 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने घेर कर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पिस्तौल बरामद की गई है। भोजपुर जिले में महुली घाट स्थित पीपा पुल पर पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर राहगीरों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक होमगार्ड जवान भी शामिल है। बरौनी जंक्शन पर उत्पाद विभाग की टीम ने कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन से 118 ग्राम हेरोइन बरामद की है। मौके से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महोदीपुर गांव में पुलिस ने एक चारपहिया वाहन से 124 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के सिवायपट्टी थाना क्षेत्र में आज तड़के अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर फोरलेन गंगा पुल के स्लैब का एक हिस्सा गिर जाने से 6 मजदूर घायल हो गए। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय एड्स संगठन के निर्देश पर भभुआ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में रेड रन के तहत 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा की। अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर दिया बल। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने इथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताया, कहा यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू कर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शेखपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
1: शेखपुरा जिले में मानसून के आगमन के बावजूद अब तक केवल 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आमतौर पर जून माह में जिले में करीब 165 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार बारिश सामान्य से काफी कम रही है और यह 30% से भी नीचे दर्ज की गई है। बारिश की कमी के कारण धान की रोपाई सहित खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। इसके चलते जिले में सुखाड़ जैसे हालात बनने लगे हैं और किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष जिले में 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान तथा लगभग 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अरहर, मक्का व अन्य खरीफ फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि अब तक 30% से भी कम धान की नर्सरी बिचड़ा तैयार हो सकी है। बारिश की कमी के कारण किसान परेशान हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी का असर भी लगातार जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इधर कृषि विज्ञान केंद्र और जिला कृषि विभाग के सहयोग से जिले में 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने, रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग तथा मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया। बीते दिनों जिले के पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी का तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर सासाराम के पूर्व पुलिस अधीक्षक हिमांशु को शेखपुरा का 29वां पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की अपनी प्राथमिकता बताया है। शेखपुरा जिले में बीते दिनों केंद्रीय चयन परिषद बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती के विभिन्न संवर्गों की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रही। इसके अलावा उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का भी आयोजन किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का भी सफल आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण परीक्षा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस बल और उड़न दस्तों की तैनाती की गई थी। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले में नियमित रूप से सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां नागरिकों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया जा रहा है। वहीं बीते माह के अंतिम रविवार से पंचायत विकास दिवस की भी शुरुआत की गई है। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पंचायतों के समग्र विकास को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सामूहिक रूप से सुना और विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले के विभिन्न हिस्सों में भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, प्रभारी मंत्री श्वेता गुप्ता, विधान परिषद सदस्य अनामिका सिंह सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को साझा करते हुए मीडिया को संबोधित किया। इधर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जिले में उत्साह का माहौल।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:50 हुए हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ई मन पसंद। सबसे पहले जो इस कार्यक्रम में आज हम शामिल कर रहे हैं, उस गाने को हमने चुना है हाफ टिकट से और पसंद आप सबों की है। गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: एडगर आर हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: गुड़िया।
1: DDL यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गाना सुनिए। पसंद आप सबों की है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप।

से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और रसीद वारसी। किदवई नगर सिद्धपुरा से आप हैं जुबैर अली खान।

0: ई मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान, आप सबो का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम उड़ान में। एक बार फिर से उड़ान कार्यक्रम में हमने आपका स्वागत किया, और वो इसलिए किया कि 2-3 सप्ताह के हमारे इस कार्यक्रम के बाद इतने ज्यादा फोन कॉल आए हैं और लोगों ने जिज्ञासा जाहिर की है, हाँ, कि बीसी और बीबीए की पढ़ाई क्या सचमुच बहुत ही उम्दा है, क्या इंजीनियरिंग से अच्छी पढ़ाई है, अच्छी है या बुरी है, ये तो हम नहीं कह सकते। चाहे वो खगड़िया हो, पूर्णिया हो, भागलपुर हो, रोहतास हो, बक्सर हो, आरा हो, पटना हो, बहुत जगह से फोन कॉल्स आए। अच्छा लगा उड़ान कार्यक्रम में हम

0: लगातार हर साल इसी समय आते हैं और आपके करियर की बातें करते हैं, क्योंकि आपका करियर है तो सब कुछ है अच्छा जीवन जीने के लिए। हाँ, आपको अच्छा पैसा चाहिए, अच्छे पैसे के लिए अच्छी नौकरी चाहिए और अच्छी नौकरी के लिए अच्छी पढ़ाई, और आज तो कहेंगे कि प्रोफेशनल पढ़ाई चाहिए, और बीसी और बीबीए बहुत ही उम्दा पढ़ाई है। हाँ, खास करके जब आपको रोजगार परख पढ़ाई की आप खोज कर रहे हैं उसके अंदर। उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, जी हाँ, उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से। आर्केड बिजनेस कॉलेज पटना के राजेंद्र नगर, आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पर है। पिछले 27 वर्षों से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई के साथ युवा साथियों के साथ एकदम खड़े हैं और लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। 100% जॉब असिस्टेंस की यहां गुंजाइश बनती है। जी हां, अगर और अधिक जानकारी चाहिए बीसी और बीबीए के लिए तो डायल करें 7520800800। वाव, क्या नंबर है, 7520800800। एक बात और बताना चाहते हैं, दाखिला वहां लें, एडमिशन वहां लें जहां हाँ किसी विशेष यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो, और अगर जो स्थायी मान्यता प्राप्त हो तो और भी अच्छा है। और आर्केड बिजनेस कॉलेज बीसीए और बीबीए के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एकमात्र स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। अगर स्थायी मान्यता नहीं है ना तो बीच में कुछ भी हो सकता है।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800। याद रखें 7520800800।
0: उड़ान, उड़ान में सबसे पहले अब हम स्वागत करते हैं आशीष जी का। और जो सवाल हमसे पूछा गया ना कि इंजीनियरिंग बीसीए और बीबीए, हम चीजों को खोलकर रख देते हैं। आप समझिए, आप जानिए, आप महसूस कीजिए, आप निर्णय लीजिए, माता पिता, बड़े बड़े भाई बहन, जिससे भी हो, लेकिन निर्णय लेने से पहले इंस्टीट्यूशन को जरूर देखिएगा। आगे और चर्चा करेंगे। नंबर है 7520800800, 7520800800। बीसी और बीबीए के लिए अगर जो आर्केड बिजनेस कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो ये डायल करें 7520800800। आशीष जी, एक बात बताइए कि बीसीए और बीबीए और इंजीनियरिंग, इसके बारे में ढेर सारे फोन कॉल्स आए थे, बताइए।
4: देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक डेटा, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं यहां पर, आज के डेट में एक डेटा कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि आज हमारे देश में जो इंजीनियर्स की जो संख्या, इंजीनियर्स की जो संख्या है वो लगभग 14 लाख के आसपास में है। मैं ये 14 लाख उनको बोल रहा हूँ जिनके पास बीटेक की डिग्री है। इस 14 लाख में से मात्र 4 लाख के पास जॉब है, मात्र 4 लाख के पास। उसके अतिरिक्त 3 लाख ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसके बाद वो कहीं बैंक में काम कर रहे हैं या कोई इंश्योरेंस बेच रहा है कहीं, या किसी ने बिजनेस कर लिया। और बाकी 7 लाख लोग निकल गया, बाकी 7 लाख आज भी रोड पर जॉब के लिए ढूंढ घूम फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो टहल रहे हैं, उतना पैसा लगा करके, इतना समय लगा करके। मेरा यही कहना है, यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है तो केवल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए इंजीनियरिंग मत कीजिए। उसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपकी, आपका जो जो टैलेंट है वो एवरेज है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स मैं बताता हूँ, जिस कोर्स को आप ज़रूर करिए और आप देखिए उसका कितना फ़ायदा आपको मिलता है। उस कोर्स का नाम है बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल आप एमसीए कहीं से कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितने सारे एवेन्यूज। एमसीए करने के बाद में बैंक से लेकर के इवन के जो आईटी कंपनी से लेकर के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का या विप्रो का विज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें लिखा रहता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एमसीए, वो एमसीए आप कीजिए बीसीए करने के बाद में, या बीसीए करने के बाद भी इवन बहुत सारी आईटी कंपनीज वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अब्सॉर्ब कर लेती है, जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिन कंपनियों में कंपनी, उसका पूरा का पूरा प्रोफाइल हमारे पास है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीसीए एक अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को आप करिए, और करने के बाद आपको लगेगा आगे चल करके कि हमने इंजीनियरिंग से बेहतर किया। हाँ, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत है, एकदम आप उसमें टॉपर्स में हैं, तो फिर आपको जरूर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगार इंजीनियरों की भीड़, बीटेक स्टूडेंट्स की भीड़,

0: तो मैं मुझे लगता है आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को, बीसीए करने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ जो बेरोजगारों की भीड़, और इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारों की भीड़। आपको ये लगेगा कि इंजीनियरिंग में बेरोजगारों की भीड़ ज़्यादा है और बीसीए करने के बाद कम है। तो मेरा समझना यही है कि आप बीसीए करिए और उसका आप लाभ लीजिए, आगे चल के एमसीए कीजिए, बाकी सब मतलब बहुत अच्छा होगा।
1: आशीष जी, आपने तो पूरी तरीके से खोल कर सारी चीजें बता दी कि बीसीए और बीबीए और इंजीनियरिंग। जी हाँ, हम अपने से कुछ भी नहीं कहना चाहते। आप एक करियर काउंसलर भी हैं और लगातार लिखते पढ़ते भी रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी आपको लोग देखता है और रेडियो पर सुन भी रहा है। बहरहाल, बीसीए और बीबीए हम बार बार कहते हैं, तोता की तरह राजेश रट लिया है बीसीए और बीबीए, क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं, आप नजर उठाकर देखिए ना, बीसीए और बीबीए के लिए ही सारे लोग दीवाने हो रहे हैं। और आपके मन के अंदर भी कहीं ना कहीं इन दो कोर्सों ने कहीं ना कहीं जगह बनाई है। चुनने से पहले, हाँ, संस्थान चुनने से पहले बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। हाँ, बहुत कुछ देखना पड़ता है, एफिलिएशन से लेकर सारी चीज़ें कि संस्थान कहाँ से एफिलिएटेड है, कहाँ से मान्यता प्राप्त है, किस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, वहाँ फैकल्टी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जॉब का प्लेसमेंट क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसीलिए आर्केड बिजनेस कॉलेज का हम नाम लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ आके दाखिला ले लीजिए, ना, कभी नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि जो 27 वर्षों से लगातार लगा हुआ है ना बीसी और बीबीए के लिए, तो कुछ तो बात होगी। आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से ही ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, जो राजेंद्र नगर आर्य कुमार रोड सगुना मोड़ पटना में है। एक बार नंबर बता रहा हूँ, जरूर डायल कीजिएगा, 7520800800। हमने साइंस स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट किए हैं उनकी बात की, पीसीएम वालों की। अब सवाल पूछते हैं आशीष जी से कि आर्ट्स कॉमर्स इन बच्चों के लिए कितना कारगर साबित होगा बीसी और बीबीए की पढ़ाई।
0: देखिए, आर्ट से जिसने किया है, वैसे तो देखिए अभी कई विश्वविद्यालय बीसीए के कोर्स के लिए मैथमेटिक्स जरूरी मांगती है 10+2 में, लेकिन कईयों ने रिलैक्स भी कर दिया है। लेकिन मेरा समझना यही है कि यदि आपने आर्ट से अगर 10+2 किया है, तो फिर बीबीए कोर्स, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स बहुत बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी ऐसे फील्ड की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर आपका निश्चित जॉब मिले। वैसे स्थिति में बीबीए कीजिए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद अगर आपने किसी अच्छी जगह से एमबीए कर लिया, तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सेम मैसेज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी देना चाहूंगा जिन्होंने 10+2 कॉमर्स के साथ किया है, क्योंकि कॉमर्स के बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो पेपर्स उनको बीबीए में फिर से दोबारा पढ़ने पड़ते हैं, तो उनको बहुत सुविधा होगी। कॉमर्स करने के बाद अगर आप बीबीए करते हैं, उसके बाद एमबीए करते हैं, तो आपको फिर पीछे मुड़के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी, और जो लोग पूरे बिहार में ये रेडियो पर बज रहा है, आकाशवाणी के सारे केंद्र इसको प्रसारित कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी नज़र में अगर ये दोनों कोर्स बीसीए और बीबीए में से किसी एक को चुनना हो, तो वो किसको चुने।
0: देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर आपका 10+2 में पीसीएम रहा है और मैथमेटिक्स अगर आपका ठीक है, अच्छा है, तो फिर आपको बीसीए करना चाहिए। और अगर आपका ठीक है, आपने पीसीएम भी कर लिया है उसके बाद भी, लेकिन मैथमेटिक्स भी एवरेज है, तो आप बीबीए चुन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमसीए, बीसीए और एमसीए करने के बाद एक आप प्रोग्रामर बनते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो आदमी जिसका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जितना बेहतर होता है, वो उतना ही अच्छी एनालिसिस कर सकता है, और एनालिसिस अगर आपकी जो जो आपकी स्किल अगर है, तो आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो मेरा समझना यही है कि कुल मिलाकर के अगर आपका, आपको खुद आकलन करना है, अब मार्क्स के हिसाब से मैं चलिए बोल देता हूँ, अगर आपको पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स है या 60% से भी ज़्यादा मार्क्स है, तो आप बीसीए ले सकते हैं। लेकिन अगर उससे कम है, 60-70% से कम अगर है, तो फिर आपको बीबीए की तरफ जाना चाहिए। और वैसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी यही थ्योरी में कहूँगा कि अगर आपको आपके अपने सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए कॉमर्स को, तो मैं बोलूँगा कि वो बीसीए की तरफ ना जाएं, बेहतर है वो बीबीए ही लें, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका कॉमर्स का एक बैकग्राउंड रहा है, और आगे चल करके उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़ने में सुविधा होगी बीबीए कोर्स में, और फिर आगे एमबीए में भी वही सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ना होगा उनको।
1: वाह वाह आशीष जी, क्या बातें आपने कही। उड़ान कार्यक्रम लेकर आने का हमारा मकसद यही है कि सारी चीज़ों को खोल कर हम अपने एक्सपर्ट से रखवा दें, तार तार कर दें।

0: कि आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगे कि अगर राजेश बीसी और बीबीए की बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आईएससी, हाँ, जिन्होंने पीसीएम के साथ किया, आर्ट्स के साथ किया, कॉमर्स के साथ किया, कौन सा कोर्स उनके लिए रोजगार पैदा करने में सहायक होगा, कौन से कोर्स को चुनना होगा। जी हाँ, यही हमारा मकसद है उड़ान कार्यक्रम को लेकर आने का, और इसीलिए हम नंबर बार बार बताते हैं, कहीं भी असुविधा लगे, कहीं भी परेशानी लगे ना, तो आर्केड बिजनेस कॉलेज का ये जो नंबर है 7520800 पर बात करें, क्योंकि ये लोग 27 वर्षों के साथ बीसी और बीबीए के साथ चल रहे हैं और न जाने कितने युवा रोजगार में आ चुके हैं। एक बात और कहते हैं कि कोर्स आपने चुन लिया, संस्थान चुनने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। पैसा आप फिर से कमा सकते हैं लेकिन गुजरा हुआ वक्त आप वापस नहीं ला सकते हैं। जहां तक पैसे की बात चली तो अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, 4 लाख तक आपको लोन मिल सकता है जिस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बड़ी बात फैकल्टी, जैसा कि आशीष जी ने कहा है कि फैकल्टी तो आत्मा होती है किसी भी संस्थान की। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किस यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी, कहां से मान्यता प्राप्त है, वो संस्थान स्थायी मान्यता प्राप्त है कि नहीं, और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आर्केड बिजनेस कॉलेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, हाँ, बीसी और बीबीए के लिए एकमात्र स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। और अगर स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ तो ये स्थिति भी हो सकती है।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
0: आशीष जी, चलते चलते आर्केड बिजनेस कॉलेज, आज का यूथ और टेक्निकल पढ़ाई क्या कहना चाहिएगा?
3: मैं समझता हूँ कि आप आइए, अगर आप 10+2 कर चुके हैं और फिर उसके बाद अगर कोई किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आप आइए। आर्केड बिजनेस कॉलेज के 2 कैंपस हैं, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़, और वहाँ पर आप बीसीए या बीबीए जिसमें भी, जो भी, जैसा मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप डिटेल्स लीजिए, सारा इंक्वायरी कीजिए और आपको समझ में आए। प्लेसमेंट बुलेटिन देखिए, आप देखिए अभी तक कितने बच्चों का, सभी बच्चों का रियल फोटो के साथ में, किस किस कंपनी में वो जॉब में गए हैं, उन सब का पूरा डिटेल्स हम आपको पूरा एक ब्यौरा देंगे, लिखित वो पूरा प्रिंटेड देंगे जिसको आप ले जा सकते हैं, और उसमें पूरा आप देखिए, देख करके आपको समझ में आ जाएगा। क्या पता उसमें से कहीं आपके गाँव का भी कोई बच्चा निकल जाए जो, और उससे फिर आप बात कीजिए, अगर उसमें आपको लिखा हुआ नजर, उसको फोन कीजिए कि भाई तुम यहाँ पे हो ना, तो आपको बताएगा कि हाँ हम यहाँ पे हैं, इस कंपनी में हैं, ऐसे हैं, और फिर आप आइए, फिर आपको आपको तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मैं फिर कहता हूँ, आप केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके हम निकालेंगे।
0: थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी चले गए और राजेश के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि उड़ान कार्यक्रम में हम सारी चीज़ों को खोल कर रख दें और आप उसे सुने, आपके माता पिता, बड़े भाई बहनों के साथ बैठकर डिसीजन लें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का डिसीजन है। हमारी समझ से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई बहुत ही उत्तम है, आप डायल कर सकते हैं। 27 वर्षों से इस कोर्स के साथ काम कर रहे हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज वाले, नंबर है 7520800800, 7520800800। तो राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
5: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं ई मन पसंद कार्यक्रम का शेष भाग।

सावन को आने दो फिल्म का ये गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद है। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका सिंह, नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से आप हैं अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चांद, फारूक फूल वाले, सैयद खलील और इनके ढेर सारे दोस्त, हरियाणा से आप हैं अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा, और इसी गाने को सुनना चाहते हैं नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा।

अब आइए सुनते हैं सुहाग फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल तमस खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जमा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोला मनी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी।

अब आइए सुनते हैं मीरा का मोहन फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहांत से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और ओम प्रकाश सविता। और इसी गाने को सुनना चाहते हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश ऋषिता।

इस गीत को सुनना चाहते हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा।

आप हैं गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद और शगुप्ता अंजुम।

फिल्म दिल का ये गाना सुनिए, पसंद आप सबों की है। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके परिवार के सभी सदस्य।

आए दिन बहार के इस फिल्म का गाना सुनिए, पसंद आप सबों की है। नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, श्रीमती सुषमा सिंह, जेके मिश्रा, श्वेता रानी पाठक, रुचि कुमारी, मंदेश्वर सिंह, प्रभात, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, हनी, कैसवी, गीलू, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही ई मनपसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक

0: उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणत संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत।

0: स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया।

गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

नीलेश्वर मिश्रा को सुनने के बाद अब आइए लोकधारा कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीमती सुधा सिन्हा की आवाज़ में ये भोजपुरी लोकगीत।

श्रीमती सुधा सिन्हा के गए इस भोजपुरी लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुए हैं। पेशे खिदमत है गज़ल का प्रोग्राम महफिल।

महफिल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खुशबू एल्बम का ये गज़ल, गुलाम अली की आवाज़ थी। और अब आइए हम आपको सुनवाएं करार एल्बम की एक गज़ल, हरिहरन की आवाज़ है। नगमा निगार हैं डॉक्टर शफीक कुरैशी और मौसिकी खुद हरिहरन की है।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है।

0: खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: भरत व्यास का जन्म राजस्थान के चुरू बीकानेर में हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भरत व्यास बीकॉम करने के लिए कलकत्ता चले गए। पढ़ाई के दौरान ही भरत व्यास ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक काम करेंगे। इसीलिए 1940 में वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई कहलाती है। कोशिश तो उन्होंने निर्देशक बनने की, परंतु उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था।
1: अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो।
0: भरत व्यास निर्देशक तो नहीं, गीतकार जरूर बन गए। उन्हें पहली फिल्म मिली 1943 में दुहाई। इसी साल संगीतकार एस के पाल ने उनसे कुल 10 गीत लिखवाए फिल्म प्रेम संगीत के लिए। इस फिल्म में भरत व्यास ने एक दो गीत गाए भी, जैसे मैं आगरे से जूता लाया रे, शांता ठक्कर के साथ इस गीत को गाया, और दूसरा गीत था घायल करके हमसे पूछती हो। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से अपना ही जहां तैयार कर, ये भरत व्यास के अपने विचार थे। सफलता पाने का उनका यही मंत्र था और इस पर उन्होंने पूरी तरह से अमल भी किया। इसीलिए हिंदी फिल्म संगीत जगत में भरत व्यास ने अपनी कलम, अपने गीतों के दम पर एक अलग पहचान बनाई।

0: भरत व्यास ने 1943 में एक देशभक्तिपूर्ण गीत लिखा फिल्म स्कूल मास्टर के लिए, संगीतकार नीनू मजूमदार के लिए, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। 1944 में फिल्म मन की जीत के लिए उनके लिखे गीत पॉपुलर हुए। एक गीत शांता ठक्कर के साथ भरत व्यास ने भी गाया, छिप छिप कर मत देखो।
1: हमको नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी।
2: गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो, गोरा गोरा गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो, हमरी नजर भर जाएगी, हमरी नजर भर जाएगी, नजर भर जाएगी, नजर।
0: अपने फिल्मी जीवन में भरत व्यास ने लगभग सभी स्थापित और बड़े संगीतकारों के लिए गीत लिखे। भरत व्यास के लिखे गीत भजन सभी बेहद पसंद किए गए।

सन 1950 और 1960 के दशक में गीतकार भरत व्यास ने जिन संगीतकारों के लिए गीत लिखे उनमें कुछ चर्चित फिल्मों के नाम हम आपको बताते हैं। संगीतकार अनिल बिस्वास के लिए बड़ी बहू, अंगुली मां।

संगीतकार अविनाश व्यास के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा द्वारकाधीश राम लक्ष्मण, संगीतकार बी एन बाली के लिए बागी सरदार राजा विक्रम, संगीतकार सी रामचंद्र के लिए स्त्री दाल में काला कारीगर नवरंग।

संगीतकार अविनाश व्यास के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा द्वारकाधीश राम लक्ष्मण, संगीतकार बी एन बाली के लिए बागी सरदार राजा विक्रम, संगीतकार सी रामचंद्र के लिए स्त्री दाल में काला कारीगर नवरंग।

संगीतकार दत्ताराम के लिए बालक, संगीतकार हंसराज बहल के लिए नखरे, राजपूत, जग्गू, अपनी इज्जत, संगीतकार हेमंत कुमार के लिए सहारा, फैशन।

संगीतकार इकबाल कुरैशी के लिए चा चा चा, जमाल सेन के लिए पतित पावन, कल्याण जी वीर जी शाह इनके लिए बेदर्द जमाना क्या जाने, और सम्राट चंद्रगुप्त

रोशन के लिए आगरा रोड, सरदार मलिक के लिए रूप सुंदरी, नाग मोहिनी और सारंगा।

वसंत देसाई के साथ जिन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे वो सभी की सभी फिल्में बेहद मकबूल रहीं और गीत भी आज तक लोगों की जबान पे हैं। लड़की सह्याद्री की, मौसी, गूंज उठी शहनाई,

हमने यहाँ पूरी लिस्ट प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि भरत व्यास के लिखे गीत जिन फिल्मों में हैं, अगर सिर्फ उनके ही नाम लिए जाएं, तो भी इस कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा।

अनेकों कर्णप्रिय मधुर गीतों के इस रचयिता भरत व्यास ने 4 जुलाई 1983 को मुंबई में अंतिम सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए एक सुरीली विरासत।

0: गीतकार भरतव्याज पर केंद्रित आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, आलेख और स्वर अमरकांत का अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। समय मिलाइए, रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग। आइए आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुमन शेखर मनान और उनके साथियों से सजा ये गीत, जिसे हमने लिया है श्याम से है दिल एल्बम का।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग।

अब आइए सुनते हैं मन योगिया एल्बम का टाइटल सॉन्ग यासिर देसाई की आवाज़ में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इसी के साथ गैर फिल्मी हिंदी गानों का ये कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

कन्यादान फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नीरज के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी शंकर जय किशन ने।

चांद की चांदनी भी फीकी लगे तेरे नूर के सामने, हर दुआ पूरी लगे तेरे साथ के बहाने। अगर इश्क की कोई सबसे हसीन निशानी है तो वो बस तेरी मुस्कान और तेरी कहानी है। कहने का मतलब दोस्तों की मोहब्बत की महफिल में जब दिल किसी का हो जाता है तब हर सितारा अपना और हर चांद भी प्यारा हो जाता है। उसी प्यार की एक खूबसूरत सौगात लेकर हम पेश कर रहे हैं ये मधुर गीत।

तेरी मुस्कान से रोशन मेरी हर शाम हो गई। श्रोताओं का ना हम यही चाहते हैं जो आप सुन रहे हैं। तेरी मुस्कान से रोशन मेरी हर शाम हो गई, तेरी चाहत ही अब मेरी पहचान हो गई। दिल ने जब से तेरा नाम अपनी धड़कनों में बसाया, कसम से हर लम्हा कह उठा, आया सनम आया दीवाना। कहने का मतलब दोस्तों कि जब मोहब्बत की महफिल सजे, जब दिल की धड़कन कोई अपना नाम कहे, जब हर सांस में बस एक ही चेहरा नजर आए, तो समझ लीजिए इश्क का दीवाना आ गया।

श्रोता दोस्तों, कभी कभी कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें जुबान नहीं बल्कि हवाएं अपने साथ दूर तक ले जाती हैं। प्यार, यादें और उम्मीदें, ये कभी मिटती नहीं दोस्तों, बस फिजाओं में घुलकर हर दिल तक पहुंच जाती हैं। या फिर यूं कहें कि हवाओं में महकते हैं कुछ अनकहे से अरमान, यादों की रोशनी से जगमग है हर एक जहान, जो दिल से निकले वही बन जाए सच्ची दास्तां। चलो चलो आज हवाओं पर लिख दें अपने प्यार का नाम।

मोहब्बत की खुशबू यूं ही महकती रहे, हर दिल में चाहत की शमा जलती रहे, जिंदगी का हर पल बने एक प्यारा सा गीत, आपकी मुस्कान यूं ही सदा खिलती रहे। दोस्तों, प्रेम के मधुर रंगों से सजे इस खूबसूरत संगीत सफ़र में आपका साथ पाकर हमें बेहद खुशी हुई। उम्मीद है आज के गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपके जीवन में प्यार, अपनापन और मुस्कान की नई खुशबू बिखेरी होगी। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए अंदाज, नई धुनों और नई यादों के साथ। तब तक अपने अपनों से प्यार बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संगीत के साथ जुड़े रहिए।

घर फिल्म के इस गाने के साथ ही हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट तराने यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल हम एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे प्रातः 5:53 पर। हिंदी समाचार प्रातः 6:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और विविध भारती के कार्यक्रम प्रातः 6:05 पर मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। आपके पत्रों पर आधारित फिल्मी नगमों का कार्यक्रम पसंद आपकी हम प्रस्तुत करेंगे कल सुबह 8:20 पर। गीत मालिका हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9:10 पर। कल सुबह 9:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा में और तब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। हिंदी समाचार आप सुनेंगे कल पूर्वाह्न 10:00 जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से पूर्वाह्न 10:05 पर आप सुनेंगे कल नन्हे दोस्तों के लिए कार्यक्रम अंकुर। 10:30 पर कल सुनिए भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। पूर्वाह्न 10:45 पर भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स रसधार की प्रस्तुति होगी। कल पूर्वाह्न 11:00 हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा में और आप तब सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से शाम 5:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन विज्ञान एवं पर्यावरण। कल आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:00 सुनिए भोजपुरी लोकगीत। शाम 6:05 पर रोज की तरह कल भी आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन। आकाशवाणी सासाराम से शाम 6:10 पर हम प्रस्तुत

करेंगे कार्यक्रम गांव घर। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत की प्रस्तुति होगी कल शाम 6:40 पर। शाम 7 बजे कल आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास कल भी रोज की तरह शाम 7:15 पर आप सुनेंगे। ई मनपसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7:50 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा की प्रस्तुति होगी रात्रि 9:15 पर कल सजेगी गजल की महफिल। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का प्रसारण रसरंग का होगा रात्रि 10:00 और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। और कल रात्रि 11:00 हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार बारी बारी से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी कल प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि 11:00 बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवा

0: को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to 8th of this month. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from tomorrow till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. The Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional development.